फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा का प्रसारण है। आज रविवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026, प्रातः के 5:57 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होता है हम

दया मानव स्वभाव को वो संवेग देती है जो अन्य में नहीं है। अन्य सभी संवेगों का जनक है दया। इसलिए तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल बताया है। जहाँ दया होती है वहाँ प्रेम परमार्थ जैसे गुण स्वतः ही चले आते हैं। इसके विपरीत दयाहीन मन समाज के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां ही निर्मित करता है।

संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य एक जैसा ही होता है। वो चाहे दरिद्र कुल में जन्मा हो या राजमहल में, उसकी ये स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसके पास कर्म रूपी शक्ति होती है। यदि ये शक्ति सकारात्मक हुई तो दरिद्र कुल में जन्मा बालक भी राजा बन सकता है, और यदि ये शक्ति नकारात्मक हुई तो राजा भी रंक हो सकता है। अर्थात भाग्य जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है।

ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया, ये उतनी ही देर के लिए है जितनी देर पेड़ की डाली में पत्ता। ना जाने कौन सा हवा का झोंका इसे अपने साथ ले जाए। हम आभारी हैं परमात्मा के कि उसने हमें एक और नया दिन दिखाया। हम कामना करते हैं उस ईश्वर से कि हमारा ये दिन भी परमार्थ और जन कल्याण में व्यतीत हो।

आज की वंदना में सामूहिक स्वरों में देशगान के साथ आपने सुने जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, चंद्रु आत्मा और साथियों के गाए भजन। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ अब संपन्न होती है आज की वंदना।

में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर, श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। पंडित जसराज के स्वर में लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

0: पंडित जसराज के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। अब आप सुनेंगे चिंतन।
1: अहंकार जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। अहंकार की उम्र बहुत कम होती है। अहंकार की उत्पत्ति अहम से हुई। जब इंसान में अहम का भाव जागृत होता है, तब अहंकार की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। अहंकार किसी राजा, देशभक्त या ज्ञानवान के पतन का कारण बनता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों और इतिहास में भरे पड़े हैं। इस धरती पर आज तक जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं और जो अपने सहज सुलभ व्यवहार से शिखर तक पहुंचे और आज भी विद्यमान हैं, वे सभी अहंकार रहित थे। जिनका व्यवहार विनम्रता से छलाछल भरा हुआ था, वे सभी सृष्टि पर्यंत हमारे प्रेरणा स्रोत बंद रहेंगे। इसके ठीक विपरीत अहंकारी आगे तो बढ़ता है, किंतु शिखर तक पहुंचने से पहले वो टूटकर बिखर जाता है। वो कभी बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि दुनिया के समक्ष उसकी छवि घृणित व्यक्ति के रूप में निर्मित होती है। जब किसी बलवान को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, तो उसकी शक्ति का ह्रास तय है। जब कोई देश अहंकारी होता है, तो उसकी तबाही भी सुनिश्चित है। कुल मिलाकर अहम अथवा अहंकार से सर्वथा हानि ही होती है, और इसके दुष्परिणाम भयावह होते हैं। इसका प्रमाण यदि शास्त्रों में खोजा जाए, तो हम पाएंगे कि अहंकार के वशीभूत बड़े बड़े सूरमाओं का दुखद अंत हुआ, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। नंका नरेश रावण, जो सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान योद्धा और शास्त्रों में पूर्ण पारंगत था, किंतु अहम भाव से ग्रसित होने के कारण माता सीता हरण का घृणित कृत्य उन्होंने किया। अहंकार में अंधे रावण को सही दिशा देने सबके प्रयास विफल हुए। परिणामतः अहंकार की ज्वाला ने न केवल उसके पूरे वंश का विनाश किया, बल्कि लंका नगरी को भी खाक में मिला दिया। जब इंसान किसी भी क्षेत्र में तरक्की करता है और अपने अहम पर अंकुश नहीं रख पाता है, तो समझिए कि वो अपने पतन का मार्ग आप ही प्रशस्त करता है। क्योंकि तरक्की उसे शिखर पर तो ले जाती है, किंतु अहम उसे जमीन पर लापटकता है। कारण, अहंकारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अन्यों का अपमान करने में कहीं अधिक आनंद का अनुभव करता है। वास्तव में देखा जाए तो दूसरों को अपने से कमतर समझने की भूल में वो स्वयं ही रसातल पर पहुंचता जाता है। अहम के संदर्भ में यदि हम विद्यार्थियों की बात लें, तो कक्षा में हमेशा अव्वल रहने वाले कई विद्यार्थी अहम में चूर होकर कक्षा के साधारण विद्यार्थियों के समक्ष अपनी शेखी बघारते हैं, और अहम के वशीभूत वे परिश्रम भी अधिक नहीं करते। और जब परीक्षा का समय आता है, तो उन्हें यही अहम ले डूबता है जो उनकी असफलता का कारक सिद्ध होता है, जबकि साधारण विद्यार्थी उससे काफी आगे निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना और उस सफलता को पचा पाना बेहद कठिन काम है। जो ज्ञानवान है, जिनका अहम रूपी विश्व पर नियंत्रण है, वे ही शिखर पर विराजमान होते हैं। एक नम्र व्यक्ति यदि किसी से कोई सद्ज्ञान अर्जित करता है, तो वो उसके सुवास से पूरे वातावरण को महकाता है। जीवन में

0: लगातार मिल रही उपलब्धियों को सहजता से लेने वाला ही वास्तव में अहंकार रहित और सर्वश्रेष्ठ है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का, वाचक स्वर था शैलेंद्र जोगी का। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। 7:20 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा और बाल सभा होगी 8:30 पर, जिसमें सुनो गुनो क्रम का विषय होगा स्वस्थ आदतें अपनाएं और चर्चा करेंगे विज्ञान के मज़ेदार प्रयोगों पर। दिन में 10:05 पर होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे प्रस्तुत करेंगे विजय शर्मा। दिन में 11:00 दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से मन की बात। मुंबई केंद्र से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 12:00 से शाम 5:30 तक। युवा मित्र युववाणी सुनेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा तंबाकू छोड़ने के उपाय और सहायता सेवाएं। क्रम एक ही फिल्म से में फिल्मी गीत होंगे और क्रम आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी।

0: आज शाम 6 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें और फिल्म संगीत 6:30 पर। रात्रि 8 बजे होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:15 पर भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम डगर विकास की। साथ ही आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी आज के शेष कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700104242।
1: ओ 8700104242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700104242 पर।
1: 8700104242।
0: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा का। श्रोताओं आज हेलो छिंदवाड़ा में लीजिए सुनिए

0: आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री महेश मस्कोले से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादें और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शिंदे से बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम के इस विशेष अंक में मैं हूं आपका दोस्त अमोल शिंदे। श्रोताओं, समय बदल रहा, तकनीक बदल रही, लेकिन आकाशवाणी और उसके श्रोताओं के बीच का आत्मीय रिश्ता आज भी वैसा ही बना हुआ है। 90 वर्षों की इस प्रेरणादायक यात्रा में श्रोताओं का स्नेह और विश्वास सदैव साथ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नियमित श्रोता जो वर्षों से इस सफर के सहभागी रहे हैं। आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित है श्री महेश मस्कोले जी, जो कि आकाशवाणी के बहुत पुराने श्रोता है। महेश मस्कोले जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद सर।
1: मस्कोले जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता है, आप आकाशवाणी कब से सुन रहे हैं और आपकी क्या यादें हैं आकाशवाणी के साथ?
2: सर, मैं 2000 से आकाशवाणी हिंदवाड़ा सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको सुनता नहीं था, मगर मोहनलाल देवांगन और हरि नारायण डेहरिया जी ने मुझे प्रेरणा दी कि आप भी आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जुड़िए, तो मैं जब से जुड़ा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं इस कार्यक्रम में पत्र वगैरह भेजता हूँ और डेली सुनता हूँ।
1: जी, बहुत बढ़िया। आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन कौन से है जो आकाशवाणी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रसारित होते हैं?
2: जी सर, मैं मुझे युवा वाणी अच्छा लगता है और किसान वाणी, तरुणों की पसंद, आपके मीत ये गीत और बाकी जो कार्यक्रम है वो भी अच्छे लगते हैं।
1: आप जब आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़ते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपके दैनिक कार्यों के साथ आप आकाशवाणी सुनने का आपको मौका कब मिलता है? आप विशेष रूप से कौन से समय में आकाशवाणी सुनते हैं?
2: सर, मैं सवेरे के वक्त में सुनता हूँ, फिर शाम के वक्त में और रात तक की सुनता हूँ।
1: मस्कोले जी, आपके व्यक्तिगत जीवन में आकाशवाणी का क्या स्थान है?
2: सर, आकाशवाणी एक माध्यम है जो हर चीज की सूचना, प्रसारण वगैरह वो देता है, जो हमें टीवी या उनसे पहले नहीं मिल पाता, मगर आकाशवाणी के द्वारा पहले मिल जाता है, जो नेटवर्क के माध्यम से हर कोने तक पहुंच जाता है।
1: आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं थोड़ा पुराने समय में जाता हूँ, आप जब आकाशवाणी सुनना आपने शुरू किया था, तब की आपकी कोई ऐसी पुरानी याद है जो अभी भी आपके दिल पर, मन पर अंकित है आकाशवाणी के बारे में?
2: जी हाँ सर, जी मैं उस समय सुनता नहीं था, मगर प्रेरणा से मैं सुनने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैं इसका डेली रूटीन बना के सुनता था।
1: ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते थे जब भी आप आकाशवाणी रेडियो लगाते थे तब?
2: जी हाँ सर जी, मैं आपकी पसंद, तरुणों की पसंद और आपकी मीत ये गीत, युवानी, ये बहुत बेसब्री से मैं इंतजार करता था जिसे सुनने के लिए।
1: क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, आप तो आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम सुनते थे, तो कोई विशेष कार्यक्रम ने आपको प्रेरित किया हो?
2: जी हाँ सर जी, मुझे युवानी से बहुत प्रेरणा मिली, उससे मुझे रोजगार के बारे में पता लगता था और किसान वाणी से मिलता था ज्ञान।
1: मस्कोले जी, आपके अनुसार आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
2: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती कि इसमें जो कार्यक्रम रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, उसे सुनने से हमें जीवन में उतार चढ़ाव का जो वातावरण मिलता है वो साझा करने को मिलता है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है।
1: मस्कोले जी, जैसा कि आप ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं,
2: जी हाँ,
1: तो गांवों में रेडियो का आज भी क्या महत्व बना हुआ है?
2: जी हाँ सर, मैं बोलता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बोलता हूँ कि आकाशवाणी से जुड़िए आप छिंदवाड़ा से, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, अच्छा प्रसारण होता है। अब तो डिजिटल नेटवर्क हो गया है तो सभी चीज अच्छा चलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है।
1: जी, आपने कभी प्रयास किया है आकाशवाणी के साथ जुड़ने का पत्रों या संदेशों के माध्यम से?
2: जी हाँ सर, मैं पत्र भेजता हूँ इसमें और फोन भी करता हूँ उसके माध्यम से।
1: तो जब आप आकाशवाणी को संदेश या पत्र भेजते हैं या जब फोन करते हैं तो आपका संदेश या पत्र पढ़ा जाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है?
2: सर, बहुत हर्ष होता है मुझे कि हमारा पत्र आकाशवाणी छिंदवाड़ा में पढ़ा गया।
1: मस्कोले जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1936 में आकाशवाणी की हमारे देश में शुरुआत हुई थी और आज 2026 में आकाशवाणी को हमारे देश में 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आकाशवाणी ने 90 वर्षों की बड़ी यात्रा संपन्न की है?
2: मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज आकाशवाणी को 90 वर्ष होते हुए देख रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। एक आकाशवाणी है जो हर जिले तक पहुंचा हुआ है, जिसे हर लोग सुनते हैं, बाहर तक के भी मैं उसमें सुनता हूँ रेडियो में, तो छिंदवाड़ा जिले का नाम आता है।
1: जी बिल्कुल। मस्कोले जी, अभी हम हमारे कार्यक्रम के उत्तरार्ध में है, तो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारे जो श्रोता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सर, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जुड़े पत्रों के

0: माध्यम से, फोन के माध्यम से, और इनके कार्यक्रम को आप सुने और लोगों को भी सुनाएं।
1: महेश मर्सकुले जी, आपने आपका अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए, हमसे आपके मन की बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
2: कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री महेश मर्सकुले से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादें और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शिंदे की बातचीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है।
2: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है। सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न तो आज

0: ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने खजरी रोड छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
2: एक ट्रेड में सिक्सर
3: ए अक्का
4: प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर,
2: मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने ही वाले हैं। अब भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान। और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू, 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉक्टर यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार

0: और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
1: हमारे देश की इतिहास में सिंधिया पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पूल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिव्रम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा मीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गंगा की ये थी पहली प्रस्तुति दिले नादान फिल्म के इस गीत के साथ। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, नक्श लायलपुरी ने गीत लिखा था, तर्ज थी खयाम की।

0: गीत गंगा में महेंद्र कपूर का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी की शब्द रचना थी, OP नैयर का संगीत था और ये गीत था किस्मत फिल्म से। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा।
1: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने खजरी रोड छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो।
3: नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं गीत गंगा। चित चोर फिल्म का ये अगला गीत

चितचोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। येसुदास की आवाज़ थी, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं गीत गंगा।

0: ऐसे तो मैं खेलूंगा।
1: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
2: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
1: अरे यार
2: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम बंधन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा।

किशोर कुमार की आवाज़ में देश परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित खन्ना ने गीत लिखा था, राजेश रोशन का संगीत था और गीत गंगा में अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में कारवां फिल्म से। मजरू का गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: तीसरी मंजिल फिल्म के इसी गीत के साथ अब खत्म होती है आज की गीत गंगा। यह प्रणय छिंदवाड़ा है, सुबह तो नहीं बजे हैं, अब प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर

0: माँ ने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसमें

0: दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी, कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क।

0: अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है।

0: 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
4: हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ

बच्चों जय हिंद। बाल सभा के सभी नन्ही मुन्ने श्रोताओं को कविता दीदी का ढेर सारा प्यार। तो बच्चों कैसे हैं आप? इस तेज गर्मी में अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना? और आपके मनोरंजन का ध्यान रखने के लिए तो बाल सभा है ही। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमारा नियमित क्रम सुनो और गुनो, जिसका विषय है स्वस्थ आदतें अपनाएं। बच्चों अच्छी आदतें ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, समय की पाबंदी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हम निश्चित रूप से सफल बन सकते हैं। लेकिन बच्चों आज के समय में कुछ बुरी आदतें जैसे तंबाकू और नशे की लत युवाओं और बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हर वर्ष 31 मई को यानी आज के दिन पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। बच्चों तंबाकू केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इससे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तंबाकू से दांत खराब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और कई बार तो मुंह खुलना भी बंद हो जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि तंबाकू केवल सेवन करने वाले व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित करती है। घर के छोटे बच्चे, बुजुर्ग और आसपास के लोग भी धुएं से बीमार हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो तंबाकू और भी अधिक नुकसानदायक है। यह पढ़ाई में मन नहीं लगाने देती, याददाश्त कमजोर करती है और शरीर को आलसी बना देती है। जो विद्यार्थी नशे की आदत में पड़ जाते हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें शुरू से ही ऐसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। वो कहते भी है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो बस जीवन में स्वस्थ आदतें अपनाइए और हमेशा खुश और प्रसन्न रहिए। और अब अपने स्वस्थ मनोरंजन के लिए सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गाना, जिसके हर दोहे में जीवन का सुंदर संदेश दिया हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये दोहावली।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कहाँ है तेरी धूल उड़ाती बाइक?
2: रिटायर्ड कर दी। ये ब्रांडेड साइकिल लक्ष्मी साइकिल स्टोर से खरीदी है, कलरफुल स्टाइलिश और दमदार ढेरों साइकिल है वहाँ। बी स्मार्ट, बी ग्रीन, राइड सेफ।
1: ए, तुझे इको बॉय बनने का सडन शॉक कैसे लगा?
2: पेट्रोल और पोल्यूशन से, अब नो पेट्रोल नो पोल्यूशन नो टेंशन, साथ में फिटनेस और सेविंग भी।
1: मैं भी कॉलेज के लिए साइकिल लाऊंगी।
2: लक्ष्मी साइकिल स्टोर, नागपुर रोड, बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा।
3: बचपन जब भी हम विज्ञान शब्द सुनते हैं तो कई बार हमें बड़ी बड़ी किताबें, कठिन सूत्र और कठिन पढ़ाई याद आने लगती है, लेकिन सच कहें तो विज्ञान

केवल किताबों तक सीमित नहीं है, विज्ञान तो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। सुबह सूरज का उगना, बारिश का होना, पंखे का घूमना, बल्ब का जलना, मोबाइल का चलना, ये सब विज्ञान का ही कमाल है। बच्चों, विज्ञान हमें केवल बातें याद करना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें सोचने, समझने और सवाल पूछने की आदत सिखाता है। जब कोई बच्चा पूछता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, हवा दिखाई क्यों नहीं देती, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ऐसे बहुत से सवाल, तो समझिए तभी विज्ञान की शुरुआत होती है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी तो कभी छोटे बच्चे ही थे ना। उन्होंने हर चीज़ को ध्यान से देखा, सवाल पूछे और फिर प्रयोग करके उनके उत्तर खोजे। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान जिज्ञासा से जन्म लेता है। तो चलिए आज कुछ ऐसे आसान और मज़ेदार विज्ञान के प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर में कर सकते हैं और विज्ञान को समझ सकते हैं। पहला प्रयोग, गुब्बारा और बोतल का जादू। इसके लिए सिर्फ एक खाली प्लास्टिक की बोतल और एक गुब्बारा चाहिए। बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगा दीजिए, फिर गुब्बारे में फूंक मारकर फुलाने की कोशिश करें। अरे ये क्या, गुब्बारा ठीक से फूल नहीं रहा? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बोतल में पहले से हवा भरी हुई है। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो बोतल की अंदर वाली हवा जगह नहीं छोड़ती, मतलब हवा जगह घेरती है। अगर बोतल में छोटा सा छेद कर दें तो गुब्बारा आसानी से फूल जाएगा। है ना कितना मज़ेदार विज्ञान। अब पानी का उल्टा जादू। एक कांच का गिलास, एक मोटा सा कागज या कार्ड और पानी। अब क्या करना है बच्चों, गिलास में ऊपर तक पानी भरो। अब कागज या कार्ड को गिलास के मुंह पर रख दो। अब एक हाथ कार्ड पर रखो और गिलास को उल्टा कर दो। धीरे से कार्ड वाला हाथ हटा लो। अरे वाह, ये क्या हुआ, पानी नीचे नहीं गिरा और कार्ड या कागज गिलास से चिपका रहा। ऐसा इसलिए बच्चों, हमारे चारों ओर हवा का दबाव है। जब गिलास उल्टा करते हैं तो बाहर की हवा कार्ड को जोर से ऊपर धकेलती है, अंदर के पानी का दबाव कम पड़ जाता है, इसलिए कागज नहीं गिरता। इसे कहते हैं वायुदाब। और अब तेल पानी की लड़ाई। इसके लिए चाहिए बच्चों एक पारदर्शी बोतल, पानी, थोड़ा सा तेल और खाने का रंग। सबसे पहले बोतल में आधा पानी भरो, 2-3 बूंद रंग डाल दो। अब ऊपर से तेल डाल दो। बोतल अच्छे से हिलाकर रख दीजिए। बच्चों, हिलाने पर तेल और पानी मिल जाएंगे, पर रुकते ही तेल ऊपर और पानी नीचे। ऐसा इसलिए कि तेल हल्का होता है, इसलिए वह हमेशा ऊपर तैरता है। इसे कहते हैं घनत्व। तो बस बच्चों, खेल खेल में आप बन गए ना वैज्ञानिक। बच्चों, आज हमने जाना कि विज्ञान डरने की नहीं, समझने की चीज़ है। आसपास की छोटी छोटी बातों में भी विज्ञान छुपा होता है। तो चलिए अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म कोई मिल गया का ये प्यारा सा गीत।

और बच्चों, अब बात करते हैं अगले कार्यक्रम के आकर्षण की। तो अगले रविवार सुनो और गुनो का विषय होगा घर का खाना सबसे अच्छा। चर्चा करेंगे पेड़ पौधों की देखभाल, इस विषय पर गीत संगीत के साथ पूछेंगे एक पहेली। और अब आज की पहेली, बाहर से मैं पहलवान हरा, अंदर से दिल मेरा लाल भरा, गर्मी में सब मुझको बुलाएं, खाकर सब ठंडक पाएं, काटो तो पानी ही पानी, बता दो बच्चों मेरी कहानी। तो बच्चों, इस पहेली का उत्तर तो आप समझ ही गए, तो बस देर किस बात की, इस पहेली का उत्तर हमें लिखकर भेज दीजिए। और अब चलते चलते एक गीत और सुन लेते हैं, लेकिन गीत के पहले सुनते हैं ये संदेश।

बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा अभी प्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं, अब मुंबई से अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज़ में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना के आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी, और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था, और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है, और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था, और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: आज मोरे अंगना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

0: हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यारम तो प्यारे।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

0: फिल्म अंगुली माल का ये गाना।
1: मेरे चंचल नैना मधुर

लता मंगेशकर ने अपनी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल बिस्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल

0: प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल का।
2: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा का प्रसारण है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं विजय शर्मा।

0: हेलो आकाशवाणी, हेलो हेलो।
1: दोस्तों, जिंदगी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक मुस्कान उसे आसान बना देती है। तो ये मुस्कान बिखेरता हुआ ये कार्यक्रम है हेलो आकाशवाणी, जिसकी हम शुरुआत करते हैं इस पहले कॉल के साथ। हेलो आकाशवाणी।
2: गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: दिलवर कुमार बोल रहे हैं सर, भागलपुर बिहार से।
1: अरे क्या बात है दिलवर कुमार जी, कैसे हैं?
2: बढ़िया सर, बढ़िया। आप अपना सुनाइए सर।
1: अरे बहुत बढ़िया साहब, अपनी 2 महीने पहले बात हुई थी।
2: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है सर। जी सर,
1: आपके यहाँ भागलपुर में आकाशवाणी केंद्र भी है ना?
2: जी सर बिल्कुल है, आकाशवाणी भागलपुर है, पूर्णिया है, पटना है सर, और भी आकाशवाणी है सर,
1: बिल्कुल
2: जुड़े हैं सर हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया था भागलपुर बिहार में है, जहाँ आकाशवाणी केंद्र भी है।
2: जी जी बिल्कुल, आइए सर, वहाँ भी आप ट्रांसफर होकर आइए सर।
1: बिल्कुल साहब, पिछले बार भी आपने न्योता दिया था, तो अब
2: जी जी
1: देखते
2: बिल्कुल
1: हैं
2: बिल्कुल,
1: आपसे भेंट होगी भागलपुर में।
2: आपसे जी सर। जी
1: जी
2: और
1: बताइए, आज
2: आप
1: कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
2: सुनाए सर, अंदाज फिल्म का
1: अंदाज फिल्म का गीत,
2: आएगा मजा, बरसात का।
1: क्या बात! अरे तो अभी तो बरसात में बहुत टाइम है भाई साहब।
2: जी सर, इंतजार तो करना पड़ेगा ना सर।
1: हाँ ये बात है, इंतजार करना पड़ेगा,
2: जी जी
1: धीरज
2: जी
1: का फल
2: और
1: वैसे ही
2: सुनाए
1: मीठा
2: जी
1: होता है भाई साहब।
2: जी सर,
1: ये वाला गीत आप गुनगुना के बताएंगे क्या?
2: आएगा मजा अब बरसात का,
1: क्या है? तेरी
2: तेरी
1: मेरी
2: मेरी तेरी मेरी दिल कर। हाँ सर,
1: जी,
2: आर जी सर
1: कहाँ आ रहे हैं आप? FM के बाहर आ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं?
2: है ना सर, वो थोड़ा काम आ गए थे। हाँ सर
1: अरे
2: बताइए, बोलिए। नहीं
1: अच्छा, अरे हमको लगा कि साहब बाहर ही आने वाले हैं, आप तो रेडियो से।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं हाँ
1: हाँ
2: सर बोले, बोला जाए।
1: सर, हाँ सर। अरे अचानक से आपकी आवाज तेज हो गई थी ना, मुझे लगा कि क्या हो गया
2: जी
1: भाई
2: जी
1: साहब।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज का गीत आपके रेडियो सेट। आपने फोन किया, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी गुड मॉर्निंग सर
0: वेरी गुड मॉर्निंग है।
1: जी। सहराज कवरेती बोल रहे थे सर, ग्राम लहगड़ुआ, तहसील तामिया।
0: जी कवरेती जी, बहुत बहुत सारा स्वागत है आपका।
1: जी सर, वर्तमान में सर अभी हम सिक्किम पे है सर।
0: अच्छा जी,
1: सिक्किम की हसीन वादियों से सर फोन किए हैं और आपसे बात हो रही है सर। कोशिश
0: बहुत
1: किए
0: बढ़िया
1: सर, कॉल मिल गया।
0: बहुत बढ़िया। कवरेती जी, क्या करते हैं आप?
1: जी सर, अभी हम तो SSB पे सर पोस्टेड है सर यहाँ पे। जी
0: अच्छा, मतलब आप एक सैनिक के पद पर कार्यरत हैं।
1: जी सर, यहाँ नेपाल बॉर्डर पे सर।
0: क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा है कि काश हम आपको देख भी पाते। बॉर्डर पे एक सैनिक जब अपने सीमा पर पूरे देश का नेतृत्व जब करता है, तो क्या मतलब अनुपम अनुभूति होती है।
1: जी सर, बिल्कुल आइएगा सर। बहुत बढ़िया, मतलब प्रकृति का बढ़िया दृश्य है सर यहाँ पे। ऊंचे ऊंचे पर्वतें हैं, झरने हैं सर, एकदम हरियाली। अभी भी इन दिनों में हरियाली सर यहाँ पे जाता ही नहीं सर।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आज कौन सा गीत आप सुनेंगे वहां पर, क्योंकि ये 31 तारीख को प्रसारित होगा ये नगमा।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: 31 तारीख
1: सर अलका
0: जी,
1: याग्निक और कुमार सानू की आवाज में सर कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए सर।
0: अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में।
1: जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है सर उनका गाना सर। पहले सुनता था, अभी भी मतलब काफी सुकून मिलता है सर।
0: चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश का ये खूबसूरत सा नगमा, जिसमें आवाज़ें जो आपने मांगी हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की है। बेहद ही खूबसूरत नगमा है फिल्म परदेश का। तो आपने फ़ोन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जी, नमस्कार सर, डीजे शर्मा जी। बस
0: देवी शंकर गुप्ता जी से हमारी बात हो रही है। बहुत बहुत सारा नमस्कार है साहब, कैसे हैं?
1: आशीर्वाद है सर आपका, और बहुत बहुत बढ़िया है। जी
0: आशीर्वाद तो साहब ऊपर वाले का है, सभी के ऊपर, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी,
1: जी सर।
0: सारे रेडियो श्रोताओं पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
1: नहीं, सर ऊपर वाले का तो प्रथम है, लेकिन द्वितीय जो है मतलब उद्घोषक महोदय लोगों का है, और आकाशवाणी के जो कर्मचारी विभाग है उनका है, कि
0: जी
1: जो इतना हम लोगों को महत्व तो दे देते हैं वो पुराने श्रोता के नाते।
0: जो बाद में जो आपने बात कही ना कि आकाशवाणी के जो कर्मचारी हैं, जो साहब हमारे इंजीनियर साहब है ना, उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। यदि मान लीजिए कि हम कितना ही बोलेंगे और इंजीनियर साहब की इच्छा नहीं होगी कि आवाज़ जाए, तो वो कैसे जाएगी?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, खास
0: तो
1: तौर पर सर इंजीनियर महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, इंजीनियर महोदय और पूरे आकाशवाणी टीम का, मतलब हम धन्यवाद करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि उनके माध्यम से ही आप और हम कनेक्टेड हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: यदि आकाशवाणी की टीम ना हो, आकाशवाणी परिवार ना हो, तो एक श्रोता और वक्ता, उद्घोषक
1: हाँ
0: और श्रोताओं का फिर जुड़ाव कैसे हो पाएगा?
1: हाँ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता ना सर।
0: जी, बिल्कुल, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: सर गाना तो गर्मी के मतलब मैं, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो
0: जी
1: गाना तो पति पत्नी और वो का ही अच्छा लगेगा, कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना
0: बिल्कुल।
1: आए या ना आए गाना चाहिए।
0: अच्छा, ठंडे ठंडे पानी में नहाने के साथ साथ नौतपा चल रहा है, जो 25 तारीख से शुरू हुआ है और 2 तारीख को समाप्त होने वाला है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको और हम सभी को। थोड़ी थोड़ी
1: जी
0: देर में
1: सर
0: पानी पीते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पियेंगे, क्योंकि शरीर का तापमान इतना ज़्यादा, मतलब होता जाता है, पसीने के माध्यम से इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है कि पानी को हमें वैसे ही पीते रहना चाहिए, प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
1: और सर क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि सर हर मौसम का अपना एक मजा है,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और अगर हम ये मौसम का मजा नहीं लेंगे तो हम मतलब अपना अनुभव कैसे साझा करेंगे,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: कि भाई हमने गर्मी में ऐसा किया और इतनी गर्मी थी और हमने ऐसा वो किए, तो हम कैसे प्रस्तुत करेंगे गर्मी के बारे में। तो मेरा ऐसा है कि मतलब हर मौसम का अपना एक मजा है और उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। और रही बात सर की मतलब बचाव अपने ऊपर है, अपने अपने शरीर पे ध्यान देना है अपने को, तो ये सारी
0: सही
1: बातों
0: बात।
1: पर ध्यान भी रखना है सर।
0: बिल्कुल सही बात। मौसम का मज़ा लिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि अपन मफलर ना लगाएं, मतलब जैसे गमछा लगाते हैं लोग, प्याज रखते हैं कई लोग, लू लगने का ज़्यादा डर रहता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं, कभी सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासतौर पर जब पानी की कमी होती है। तो इसका
1: जी
0: मतलब
1: सर,
0: ये नहीं
1: मतलब
0: कि
1: मेरा
0: मज़े के
1: यही है
0: चक्कर में
1: कि
0: सब सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और बढ़िया दोपहर में निकले भैया कि घूमने जा रहे हैं, है
1: नहीं
0: कि नहीं? फिर
1: सर
0: वो ऐसा हो जाए, घूमने तो गए और फिर 2 दिन बाद बिस्तर में पड़े भैया, तो ये स्थिति ना हो जाए।
1: हाँ, मजा मजा भी लिया जाए लेकिन सावधानी भी रखी जाए।
0: हाँ, सावधानी बरतते हुए मजा लिया जाए,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: पेट को बिल्कुल ठंडक प्रदान करने वाले पेय पीते रहें तो ज़्यादा आनंद आएगा, और स्वस्थ रहना तो मतलब सबसे, सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी, सबसे प्रथम मतलब जो स्वास्थ्य जीवन जो है सबसे बड़ी पूंजी है, तो
0: बिल्कुल
1: इसके
0: सही
1: सबसे
0: बात है,
1: प्रथम तो यही है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए।
0: बिल्कुल सही बात है। वो कहते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो हम आपको सुनवा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, इसको फिल्म है पति पत्नी और वो, जो कि आपने पसंद किया है।
1: बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत
0: बिल्कुल,
1: धन्यवाद सर।
0: आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, और आपके रेडियो सेट पर आपका पसंदीदा नगमा ये रहा।
2: ओ ठंडे ठंडे पानी।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: मैंने सस्ती साइकिल ली, पछताना पड़ा, बार बार सुधरवाओ।
1: डोंट वरी, स्कूल कॉलेज या सेहत की बारी, टाटा स्ट्राइडर है भरोसेमंद सवारी और ब्रांडेड भी।
0: कहाँ मिलेगी?
1: ब्रांडेड साइकिल के लिए मशहूर लक्ष्मी साइकिल का नया शोरूम चर्च के पास नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
0: वाह,
2: टाटा प्रोडक्ट यानी स्ट्रेंथ सेफ्टी एंड स्टाइल।
1: टाटा स्ट्राइडर लक्ष्मी साइकिल नागपुर रोड।
3: हेलो आकाशवाणी।
4: हाँ सर जी।
3: जी हेलो आकाशवाणी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
4: बिल्कुल साहब, नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्कार जी, आप एक शिक्षक हैं शायद, मुझे याद आ रहा है।
4: बिल्कुल आपका अनुमान सही है।
3: बिल्कुल साहब, बहुत दिन बाद बात हो रही है आपसे।
4: हाँ, करीब 4 माह के आसपास का समय हो गया सर। मैं बोल रहा हूँ सर, माँ भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम और पोस्ट अटकोहा तहसील लवकुश नगर छतरपुर जिला मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू बोल रहा हूँ।
3: बिल्कुल साहू जी, कैसे हैं आप?
4: बस आप बढ़िया थे, गर्मियों को आनंद ले रहे थे। और
3: बहुत बढ़िया, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं साहब आपकी भी?
4: बिल्कुल साहब, एक हफ्ते का समय और बचा है, फिर 1 जून से विद्यालय पुनः खुल जाएंगे। तो ऑफिशियल से संबंधित जो भी काम रहता है वो हमारा शुरू हो जाता है, बाकी बच्चों का आने का सिलसिला रहता है, मतलब 15 जून के बाद से 16 से।
3: जी
4: ऐसा रहता है। आपका शुभ नाम साहब, आपने पहचाना है लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फर्म नहीं।
3: जी मैं विजय शर्मा बात कर रहा हूँ।
4: हाँ बिल्कुल साहब,
3: विजय शर्मा, अपनी 2-3 बार पहले भी बात हुई है।
4: हाँ हुई हुई, बिल्कुल हुई है। आवाज से तो मुझे लग रहा था कि आपसे बात हुई है सर, लेकिन चूंकि नाम भूल जाता है, काफी समय हो जाता है तो।
3: सुरेश जी बोल रहे हैं ना? सुरेश जी।
4: हाँ सुरेश कुमार साहू।

0: जी सुरेश जी, एक बात बोलनी थी। देखिए, हम तो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, पर आपका भी उच्चारण बहुत अच्छा है। आपके जो शब्दों में पकड़ है, जो वाक्पटुता है, वो काफी निपुण हैं आप उसमें।
1: ये सर, क्योंकि हम अन्य केंद्रों से भी जुड़े रहते हैं, हमारे छतरपुर जिले में भी आकाशवाणी संचालित है
0: जी
1: और अन्य प्राइवेट FM चैनल भी है, तो जब जैसा हमको समय मिलता है तो हम वहाँ से भी जुड़े रहते हैं, तो ये जो हम आपके समक्ष बात रख पाते हैं, कहीं ना कहीं आकाशवाणी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ से बहुत कुछ बातें और भाषा शैली की, जहाँ तक आपने भी बात की है, तो वो भी हम काफी मतलब जानकारी और बोलने का ढंग, लहजा
0: जी
1: यूं कहें तो, सब हम सीखने को मिलता है सर।
0: चलिए, एक बात बताएं कि आकाशवाणी छतरपुर से आप बात कर रहे हैं, तो छतरपुर का
1: जी
0: प्रसारण और आकाशवाणी छिंदवाड़ा का प्रसारण कैसा आकलन
1: हाँ
0: करते
1: हाँ
0: हैं आप दोनों में?
1: जी हाँ बिल्कुल, जहाँ तक आपने आकलन की बात की है, तो अब हम चूंकि ये प्रसारण का जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये चूंकि रेडियो के साथ साथ मतलब ऑनलाइन के माध्यम से हम सुनते हैं खास तौर से, तो
0: जी
1: मुझे तो ज्यादा अंतर तो सर कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो क्वालिटी आपके केंद्र से सुनने को मिलती है हमें मोबाइल के माध्यम से,
0: जी
1: वही वही गुणवत्ता हमारे केंद्र से भी प्रसारित होती है।

0: तो मुझे अंतर नहीं महसूस होता है। हालांकि बढ़िया क्वालिटी आपके यहाँ की अभी आती है और हमारे यहाँ का केंद्र वहाँ से भी इकते हैं, उसमें आपकी हम मेहनत को सलाम करते हैं, आप पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं।
1: बहुत सारा धन्यवाद है। और देखिए, आकाशवाणी छिंदवाड़ा और छतरपुर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है शायद आकाशवाणी छतरपुर की स्थापना पहले हुई थी आकाशवाणी छिंदवाड़ा के।
0: हाँ, 1976 की है सर स्थापना आकाशवाणी छतरपुर।
1: जी सुरेश जी, कौन सा गीत आप की नज़र करें हम आज?
0: गीत पसंद के पूर्व शब्दों पंक्ति बोलना चाहूंगा, ध्यान में आई मुझे।
1: जी, स्वागत है।
0: लाइनें कुछ इस प्रकार से है कि रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी खुशी मिले जीवन में उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती।
1: बिल्कुल सही बात है। रंग बिरंगे पंख लगाकर देखो उड़ता जाता है, और ये वक्त आवारा पंछी है जो नहीं पकड़ में आता है।
0: हाँ बिल्कुल, नहीं पकड़ में आता बिल्कुल।
1: बिल्कुल सही बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये कहीं ना कहीं जो आपने पंक्तियां सुनाई और मैंने पंक्तियां सुनाई, ये वक्त की महत्ता और उसकी सत्यता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी
1: सही
0: ओर
1: बात
0: हमको
1: है
0: इशारा करती हुई है, दर्शाती
1: जी। तो कौन सा गीत इसी से मिलता जुलता गीत भी सुनने वाले हैं क्या आप?
0: है। हाँ, गीत लगभग प्रेरणादायी ही रहेगा सर, क्योंकि मैं खासतौर से ओल्ड मूवी के गीत और ओल्ड मूवियों को देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें एक घटना के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई और वास्तविकता वास्तव में झलकती रहती है पुरानी फिल्मों की बात करें जहाँ तक।
1: जी बिल्कुल, बताएं तो कौन सा गीत सुनाएं?
0: मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है सन्यासी
1: जी
0: और
1: सन्यासी।
0: उसमें गीत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
1: बहुत बढ़िया, सही बात है।
0: हाँ
1: और
0: सर,
1: गीत भी
0: ये
1: मतलब आपने
0: सन्यासी मूवी के
1: शानदार।
0: जितने भी गीत हैं अच्छे हैं।
1: हाँ नहीं, सन्यासी फिल्म के हर गीत बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब हैं। तो हम आपके
0: बड़ी
1: रेडियो सेट
0: लाजवाब है,
1: पर
0: गीत भी सर लाजवाब है और फिल्म का परिदृश्य भी बहुत अच्छा है कुल मिलाकर के। हाँ
1: बिल्कुल सही बात, और आपकी आवाज़ भी लाजवाब है।
0: हाँ
1: चलिए,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सर, आपकी
1: आपको हम सुनवा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर फिल्म सन्यासी का ये नगमा। आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर, आपका दिल से धन्यवाद।
1: जी।

0: ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हाँ नमस्कार सर जी।
0: जी। नमस्कार जी, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ सर जी।
0: महाराष्ट्र से तुकाराम यादव जी बात कर रहे हैं
1: जी,
0: जी। कैसे हैं तुकाराम जी?
1: हम भी गए, आप कैसे सर जी?
0: बस आशीर्वाद है महाराष्ट्र वालों का।
1: अपना छिंदवाड़ा परिवार कैसा है?
0: पूरा छिंदवाड़ा परिवार बहुत बढ़िया है और आप और हम तो कनेक्टेड हैं। महाराष्ट्र की बॉर्डर नागपुर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर छिंदवाड़ा,
1: जी, बिल्कुल जी,
0: दिल से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग तो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी। और क्या करते हैं आप?
1: मेरा वर्क है, मैं वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल चूल्हे बना के।
0: बहुत बढ़िया, मतलब आप नहीं चाहेंगे तो लोग दरवाजा नहीं लगा पाएंगे।
1: बनाएंगे लकड़ी का बना दे।
0: नहीं चलो ठीक है, बढ़िया है। मतलब सबसे अहम रोल है आपका तो,
1: जी,
0: यदि देखें हम तो जीवन में दरवाजा ना हो, मतलब कारपेंटर ना हो तो फिर तो क्या, मतलब क्या ही हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम।
1: नहीं, करते
0: सही बात है कि नहीं
1: सही सही। एकदम
0: जी? तुकाराम जी, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है,
1: जी, तंबाकू
0: तो कौन सा गीत सुनाया आज आपको?
1: से क्या होता है? लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो तंबाकू से कैंसर हो जाता है लोगों को।
0: सही बात है। क्या है, देखो अपना जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। लोगों तंबाकू खा के बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, कहीं हृदय रोग हो जाता है।
1: जी
0: WHO ने सिर्फ यही बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को जागरूकता मिले, इसलिए ये वाला दिवस जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत करी। 31 मई आज

0: मई है और आज हम इस दिवस को मना रहे हैं
1: जी।
0: तो कौन सा गीत सुनाया आपको?
1: डॉन डॉन का है, खड़ी के पाना बनारस वाला।
0: अच्छा, या तो फिर वो एक गीत है फिल्म हम दोनों, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: और बड़े जो भी चलता है,
0: मतलब हमारी जो बातें हुई है उसके हिसाब से वो गीत बहुत फिट बैठता है।
1: जी जी जी बिल्कुल सही है।
0: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मोहम्मद रफी का गीत है और फिल्म है हम दोनों।
1: जी वो चलेगा सर।
0: चलिए तो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम दोनों का मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये नगमा। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उस मित्र का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बताइए।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी
1: हमारे मित्र गौतम राय बोली जी, लोकेंद्र वर्मा जी, सुनीता जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावनकर जी, धीरज भाई रबारी जी,
0: आप सभी की पसंद पर ये नगमा फिल्म है हम दोनों और आवाज मोहम्मद रफी की है। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: जी जी नमस्कार जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, हेलो आकाशवाणी में फोन
1: हेलो,
0: लग चुका है। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं गिरीश बारस्कर नई आबादी से बात कर रहा हूँ। मैं
0: जी, गिरीश
1: नई
0: बारस्कर जी
1: आबादी
0: से
1: से
0: बात
1: बात
0: हो रही है हमारी,
1: जी।
0: जो नई आबादी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: जी बिल्कुल, स्वागत है आप।

0: का गिरीश जी, क्या करते हैं गिरीश जी?
1: मैं टीचर हूँ सर,
0: अच्छा जी,
1: प्राइवेट स्कूल में।
0: चलिए, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं आप, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं?
1: मैं तो वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर।
0: अच्छा जी, और कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब किस
1: मैं 8
0: स्टैंडर्ड
1: तक
0: तक
1: के
0: स्कूल?
1: स्टैंडर्ड का स्कूल है मेरा।
0: अच्छा जी, तो आप खुद संचालक हैं स्कूल के?
1: नहीं मैं नहीं हूँ, संचालक दूसरे हैं।
0: जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको गीत सुनने और गुनगुनाने का भी शौक है?
1: थोड़ा थोड़ा
0: चलिए, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। संगीत
1: जी।
0: जो ऐसी विधा है वो हमें तरोताजा रखती
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: जी, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सर, मुझे आप सुना दीजिए, हीरा पन्ना फिल्म का जो गीत है।
0: हीरा पन्ना फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में और लता मंगेशकर की आवाज में है ना, कि तमन्ना है तो मुझे हीरा मिल जाए।
0: चलिए, आपको सुनवा रहे हैं आपके रेडियो
1: हाँ
0: सेट पर आपका पसंद किया हुआ किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हीरा पन्ना फिल्म का ये नगमा। आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

साथियों, धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और शाम अपने साथ ले आती है सुकून, दोस्ती और यादों की खुशबू। तो बस यादों में हमें बसाए रखिएगा। और आज का ये कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी ही संपन्न हुआ। श्रोताओं, यदि आप भी बनना चाहते हैं हमारे साप्ताहिक फोनिंग कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का हिस्सा, तो हमें फ़ोन करें इस नंबर पर 8989116346। नंबर एक बार फिर सुने 8989116346। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला श्री राजेश भारद्वाज जी और श्री राजेश ठाकुर जी का। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ। आप ध्यान रखें आपका और आपके अपनों का। इसी कामना के साथ ही हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शुभ दिवस।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से मन की बात की 134वीं कड़ी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे।

0: इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये

0: चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है अभी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना, और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीरबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कॉम्पिटिशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसे ही मेहनत कर

0: देखते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा

साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखा

देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं।

साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।

0: अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।

अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से देशवासियों के लिए मन की बात की 134वीं कड़ी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जाएगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रूड।

0: सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही

0: ये आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज़ केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वीशा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक के को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहाँ छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई ज़िंदगी से जब चला जाता है और ज़िंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफ़र को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूँ चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की ज़िंदगी से यूँ चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी, तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने, और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो, या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो भी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द भाव लेकर आता है, यह न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुँचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई ज़िंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज़ उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज़्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहाँ हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखता है कि लिखते हैं कि

संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं, हम जा रहे माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की ज़िंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय। जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूँ ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है ये आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहाँ दूरियाँ ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ ना कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गाँव के लोग जाने वाले रास्ते पर खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहाँ सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें ज़रा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियाँ साथ नहीं देती और आँखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा

0: था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वह छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफ़र से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाज़त। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणकों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का

शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके तीन शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया है। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा

0: माँ की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्वी

0: सागर लक्षद्वीप केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में, प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल बिस्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर आर्य।

श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
3: मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
0: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
1: देसी।
2: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
3: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
3: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: मैकेंजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी

0: उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का

0: और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
2: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: अब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी हाँ
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
2: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
2: ओके
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
2: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
2: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।

0: को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी। क्या रहेगी?
0: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है, बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है,
0: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूं।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती

0: एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
1: ओ, डॉक्टर रामदास।
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
1: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
1: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो, क्यों डॉक्टर?
2: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों, बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
3: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
2: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू।
2: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू डॉक्टर।
2: क्योंकि

0: अपने में ही तुम्हारा भला है।
1: अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
3: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
2: डेजी डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
2: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
3: लॉरेंस, तुम अचानक,
2: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
3: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
2: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
3: मैं भी तुम्हें,
2: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
3: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
2: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
3: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
2: मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, उसको फ्रेम करवा के यहां रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
3: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
2: डेजी,
3: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
2: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
3: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
2: नहीं, डेजी,
3: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
2: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
3: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते।
2: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
3: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
2: ओह माय गॉड,
3: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
2: नो,
3: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूं।
2: विदा?
3: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
2: नहीं, नहीं, डेजी, डे, डे, डे, डेजी,
3: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूं। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
2: डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है।
3: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस,

0: करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ, ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए?
1: ये क्या हो गया,
0: ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो डॉक्टर को बुला लाती हूँ। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसी हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
2: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
2: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।

0: इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी, और वो कवि थे,
1: जी
0: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी
0: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: रखते ही
0: हैं।
1: हैं।
0: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा
0: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी।
1: जी बिल्कुल
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे,
1: अच्छा जी
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने, और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु राय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु राय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में, और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा, और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया, और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थी। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना, और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई

0: अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
1: जी
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे। लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी
0: फ्रीडम। हाँ,
1: जी।
0: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी, वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले। तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब। तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहां पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है। तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं

0: नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ
0: था
1: वो संपन्न हो
0: विवाह
1: गया।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दंपत्ति
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह,
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई,
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी, उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो

0: क्या थे
1: थे
0: वो सब पता चलने लगा।
1: जी।
0: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
1: घर में एक आम पिता की
0: आम
1: तरह वो
0: पिता की
1: रहे
0: तरह।
1: जी।
0: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई
1: जी
0: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने
1: लिखाई
0: की
1: थी
0: शक्ति
1: जी बिल्कुल,
0: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
0: जी
1: दिखाया।
0: जी
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे। हाँ
1: अच्छा
0: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है। बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी जी
0: ये यही कविता

0: है जो उन्होंने
1: लिखी।
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
1: जी
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी

0: और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
1: जी
0: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी। तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको
1: बिल्कुल
0: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान।

0: ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
1: जी
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये, इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल, सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के,
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी
0: सही
1: बात ये
0: बात।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली, रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी,
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मित्तल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं, मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी

0: अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे, तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
1: भील
0: तो
1: जाति के
0: भील
1: लोग।
0: जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी। हाँ,
1: अच्छा।
0: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे, तो
1: जी
0: ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है।
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे में
1: दिया।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: हुए।
0: हालत क्या हो गई, भगवान
1: हाँ
0: कितना बदल गया इंसान,
1: बहुत।
0: हाँ। और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी,
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज
0: है,
1: है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।

0: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
1: जीवन
0: है और अपने
1: दर्शन
0: मन को हम समझा लेते हैं
1: समझा
0: कि
1: लेते
0: अच्छा
1: हैं।
0: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे ना रे भाई, तो
1: हाँ,
0: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
1: कर्मों
0: सब
1: में कुछ
0: लिखा
1: गलत।
0: है तो
1: और दूसरा गीत है जो, दूसरों का दुखड़ा दूर करने
0: वाले।
1: वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूं कि उनके हर एक गीत को, हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व

0: ही पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नैन नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौसे गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौसे गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई तौबा।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, FM 102.2 MHz पर। शाम के 5:30 बजे हैं और हम अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा का पहला आकर्षण लाए हैं, हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, उम्मीदों की उड़ान, सपनों की पहचान और युवा दिलों की धड़कन लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके बीच। स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल शर्मा। दोस्तों, हर एक दिन अपने साथ लाता है नई सोच, नई सीख और नई प्रेरणा, और आज का हमारा यह सफ़र भी होने वाला है बेहद खास। सबसे पहले हमारी आज की बात में हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, तंबाकू छोड़ने के उपाय और सहायता सेवाएं। इसके बाद सजेगा सुनों का खूबसूरत गुलदस्ता, फिर जानेंगे आज का इतिहास, साथ ही बात करेंगे कल के आकर्षण की, और कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे मन को सुकून देने वाली अमृतवाणी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले पल खास होने वाले हैं और इन पलों में होगी जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन। दोस्तों, आज की बात में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, तंबाकू छोड़ने के उपाय और सहायता सेवाएं। तंबाकू का सेवन, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे छोड़ा जा सकता है और सही सहायता से यह आसान भी हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं तंबाकू छोड़ना क्यों ज़रूरी है। तंबाकू सेवन से कई गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियाँ, सांस लेने में तकलीफ और दांतों व मसूड़ों की समस्याएं। लेकिन अगर समय रहते तंबाकू को छोड़ दिया जाए तो शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अब जानते हैं कुछ प्रभावी उपाय जो आपको तंबाकू छोड़ने में मदद कर सकते हैं। एक निश्चित दिन तय करें, जिस दिन से आप पूरी तरह तंबाकू छोड़ेंगे उसे तय करें और उस पर टिके रहें। ट्रिगर से बचें, उन परिस्थितियों, दोस्तों या जगहों से दूर रहें जहाँ तंबाकू का सेवन होता है। स्वस्थ विकल्प अपनाएं, जैसे च्युइंगम, फल या पानी पीना जब भी इच्छा हो। व्यस्त रहें, खाली समय में पढ़ाई, काम या व्यायाम करें। परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, अपने निर्णय के बारे में उन्हें बताएं ताकि वे आपका समर्थन कर सकें। दोस्तों, तंबाकू छोड़ना अकेले करना हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार और कई स्वास्थ्य संस्थान इसके लिए सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के तहत काउंसलिंग सेवाएं दी जाती हैं। नज़दीकी सरकारी अस्पतालों में तंबाकू निवारण केंद्र में भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। डॉक्टर और काउंसलर्स के द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाता है। याद रखिए, तंबाकू छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। कभी कभी मन करेगा लेकिन हार नहीं माननी है। हर दिन जब आप तंबाकू से दूर रहते हैं, आप अपने जीवन को और स्वस्थ बना रहे होते हैं। तो श्रोताओं, आज का हमारा संदेश यही है, तंबाकू छोड़ें, जीवन अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ लंबा जीवन जिएं। इसी के साथ क्रम आज की बात पूर्ण हुआ, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
2: कहाँ है तेरी धुआं उड़ाती बाइक?
3: रिटायर्ड कर दी। ये ब्रांडेड साइकिल लक्ष्मी साइकिल स्टोर से खरीदी है, कलरफुल, स्टाइलिश और दमदार ढेरों साइकिल है वहाँ। बी स्मार्ट, बी ग्रीन, राइड सेफ।
2: ए, तुझे इको बॉय बनने का सडन शॉक कैसे लगा?
3: पेट्रोल और पोल्यूशन से। अब नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, नो टेंशन, साथ में फिटनेस और सेविंग भी।
2: मैं भी कॉलेज के लिए साइकिल लाऊंगी।
3: लक्ष्मी साइकिल स्टोर, नागपुर रोड, पपुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा।
0: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा के युवा श्रोता उज्जवल चौरसिया से वार्ता का संपादित अंश।
4: आकाशवाणी का एक युवा श्रोता यानी मैं उज्जवल चौरसिया आप सभी के समक्ष इस मंच से उस कार्यक्रम की आवाज बनकर प्रस्तुत हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी, आपकी, इस देश की, हम सबकी आवाज रही है। न केवल आवाज बल्कि हम सबकी पहचान, हमारी एकता का प्रतीक और अपनेपन का एहसास रही है। जी हाँ, प्रिय आकाशवाणी के स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है और इसी अवसर पर हम सब आकाशवाणी के हमारे जीवन पर प्रभाव और महत्व के स्मरण करेंगे, क्योंकि आकाशवाणी का महत्व और योगदान न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि भारत की उन्नति और विकास में अविस्मरणीय है, इस बात से हम सब अवगत हैं। इसलिए हम केवल स्मरण करेंगे। आकाशवाणी ने मुझे मेरे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण दिए हैं और ये मेरे कुछ क्षण आकाशवाणी के नाम। हम सभी जानते हैं आकाशवाणी आज़ादी के पहले यानी कि सन 1936 से कार्यरत है।

आजाद भारत की आवाज रही है। आकाशवाणी ने भारत की उन्नति और योगदान में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हम अगर देखें आजादी के समय आधुनिक इतिहास की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन आधुनिक भारत अभी बहुत दूर था। तकनीकी और संचार व्यवस्था में काफी सारी समस्याएं थी। ऐसे वक्त पर आकाशवाणी ने भारत सरकार, नेता, अभिनेता, विशेषज्ञ और आम जनता के बीच में एक सेतु यानी ब्रिज की तरह काम किया और भारत के उन्नति और विकास में अपना अमूल्य हिस्सेदारी प्रदान की। उस वक्त मनोरंजन और ज्ञान के स्रोतों के अभाव के चलते आकाशवाणी ने जनता और देश के लिए कई दशकों तक सांस्कृतिक, कला, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाई। आकाशवाणी न केवल एक मंच है, बल्कि कई कलाकारों की आय, उनकी आवाज और उनके व्यक्तित्व विकास का जरिया रही है। आकाशवाणी बहुत समय तक मनोरंजन के क्षेत्र में अपने आप एक अर्थव्यवस्था की भूमिका निभाई है। ये सब आकाशवाणी के कई महत्वपूर्ण और प्रमुख योगदानों में से अहम योगदान थे, लेकिन इन सबसे परे अंकों, तथ्यों एवं भाषणवादी योगदानों से परे आकाशवाणी आपका, मेरा एक मित्र और अच्छे बुरे वक्त का साथी रहा है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलाव ही सृष्टि की चाल है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। पर कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती, जैसे हमारे जीवन में हमारी पुरानी किताबों की महक, हमारे महत्वपूर्ण रिश्ते, कई पुरानी

0: योगदानों में से अहम योगदान थे, लेकिन इन सबसे परे अंकों, तथ्यों एवं भाषणवादी योगदानों से परे आकाशवाणी आपका, मेरा एक मित्र और अच्छे बुरे वक्त का साथी रहा है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलाव ही सृष्टि की चाल है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। पर कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती, जैसे हमारे जीवन में हमारी पुरानी किताबों की महक, हमारे महत्वपूर्ण रिश्ते, कई पुरानी धुंधली यादें। ऐसा ही एक रिश्ता और ऐसा ही एक याद है हमारा आकाशवाणी के साथ, जो समय के साथ शायद ही कभी बदले या कभी ना बदले। आकाशवाणी ने, जब हम आकाशवाणी के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप को एक समय पीछे लेके जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन में जब हमारे गर्मियों की छुट्टियाँ लगती थी और मनोरंजन के साधनों का अभाव होता था, तब गर्मी में हमारी मम्मी किचन में काफ़ी सारे काम करती थी और रेडियो में आकाशवाणी के कई अनेक कार्यक्रम चलते थे, जिससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। आकाशवाणी केवल एक साथी नहीं रहा है, आकाशवाणी एक सोच रही है। आकाशवाणी सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी एक सोच का माध्यम रहा है। आकाशवाणी के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित किया है। उनमें से एक है युवा कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से दैनिक जीवन में विकास करने की क्षमता, अलग अलग करियर गाइडेंस और अनेक तरह के अवसर प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह मेरे दादाजी और हम सबके यहाँ के बुजुर्ग समाचार से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी आकाशवाणी के सुबह के समाचार सभी के दिन में चाय के साथ एक उनके मित्र का भूमिका निभाती है। आकाशवाणी के समाचार ना केवल ऑथेंटिक होते हैं, तो जितने भी र्यूमर्स और आज की तरह गलत जानकारी है, इन सबको खंडित करते हुए आकाशवाणी एक सच्चे और एक प्रतिष्ठित समाचार की भूमिका निभाती है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी केवल समाचार और मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, भाषा, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की सशक्त पहचान रही है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज के आधुनिक डिजिटल युग तक आकाशवाणी ने गांव-गांव और शहर शहर तक जानकारी पहुँचाने, लोगों को जागरूक करने तथा समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी विश्वसनीयता, सरलता और जनहितकारी कार्यक्रम ने हर वर्ग के लोगों को लोकप्रिय बनाया है। इसलिए हम आकाशवाणी के योगदान को समझना और उसकी महत्व को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में जन जन की आवाज है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना आकाशवाणी छिंदवाड़ा के युवा श्रोता उज्ज्वल चौरसिया को। आइए अब बढ़ते हैं क्रम गुलदस्ता की ओर और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दोस्तों अब क्रम गुलदस्ता में सुनते हैं ये गजल गुलाम अली की आवाज में।

दोस्तों, क्रम गुलदस्ता का अगला गीत है फिल्म तलाश से, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, अपने संगीत से सजाया है राम संपत ने और आवाज़ दी है विशाल ददलानी ने।

दोस्तों, आइए अब जानते हैं क्या है आज का इतिहास। आज के दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। आइए जानते हैं कल के आकर्षण। कल आज की बात में हमारी चर्चा का विषय होगा माता पिता का त्याग और समर्पण। फिर क्रम करियर कामयाबी का में होगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर करियर पर बात। फिर सुनेंगे आपके मनपसंद गीत क्रम तरुणों की पसंद में। फिर जानेंगे आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अंत में सुनेंगे अमृतवाणी। अब सुनते हैं आज की अमृतवाणी। यदि आपके पास वास्तव में कोई सपना नहीं है तो वास्तव में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो श्रोताओं, ये तो था आज का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे युववाणी के साथ। आपके पत्रों एवं मैसेजेस के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके पत्रों और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। अब अपने मित्र अतुल शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गजलें। खूबसूरत हैं आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। श्रोताओं, ये खूबसूरत गज़ल अब हम आपको सुनवाएंगे तलत अजीज़ की आवाज़ में।

श्रोताओं, गैर फिल्मी गज़लों के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं पयाम सईदी का कलाम। जाहिद हुसैन की मौसिकी में आप सुनेंगे चंदन दास को।

श्रोता, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा और आप लुत्फ ले रहे हैं गैर फिल्मी गजलों का। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं कतील शिफाई की लिखी गजल को जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। जगजीत सिंह की गाई इसी खूबसूरत गजल के साथ अब संपन्न होता है गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 6:30 बजे हैं और हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गाए ओम शांति ओम इस फिल्म के गीत के साथ ही अब संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 6:45 हुए हैं। हम आपको अब सुनवा रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर पंचराज वर्मा से दीपांकर तिवारी की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, चर्चा के आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि नशा नाश की जड़ है, ये हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे देश में नशे की लत युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में और बच्चों में भी बढ़ गई है। इस नशे को कम करने के लिए शासन और प्रशासन बहुत सारा कार्य करते हैं, जन जागरूकता के अभियान चलाते हैं और इन अभियानों के माध्यम से आम जनता को नशे से दूर रखने का प्रयास करते हैं। नशा अब कई प्रकार का होता है, जिसमें हम सामान्यतः मदिरा और तंबाकू के नशे को सबसे ज्यादा युवाओं में और अन्य वर्गों में पाते हैं। तंबाकू के नशे को यदि देखा जाए तो यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से भी हमें अपंग बना देता है। इस नशे की भयावहता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो तंबाकू के नशे से किस प्रकार बचा जाए इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर पंचराज कुमार वर्मा जी। आप वर्तमान में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी हैं और जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर पंचराज वर्मा जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को अभी बताया, 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य रहता है और किस तरह की जागरूकता फैलाना आप सभी का ध्येय होता है?
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ये ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी बहुत हार्मफुल होता है। इस साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है निकोटीन और तंबाकू की लत का आकर्षण का बेनकाब करना।
1: ये काफी बड़ी थीम है।
2: जी जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें अपन तंबाकू कैसे ले रहे हैं, क्या क्या दुष्परिणाम है इसके, समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
1: जी,
2: तो इस थीम में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे निकोटीन, कैसे तंबाकू की आदत

0: लगती है
1: जी। तो हम यहीं से अपने जो चर्चा है इसकी शुरुआत करते हैं कि एक जन सामान्य में जब हम बच्चे की बात करते हैं तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बहुत सारी चीजों से अनजान होता है, धीरे धीरे उसके अंदर अच्छी आदतें और बुरी आदतें आती हैं। तंबाकू की आदत जो लगती है या वो किसी भी प्रकार का नशा जब करता है तो उसका वो किस तरह से शुरू करता है, वो इसके चक्र में कैसे फंसता है?
2: इसमें तो शुरुआत ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड सर्कल, दोस्तों जो अपना जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त यार हैं, तो वो अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप भी जो साथ में रहता है वो भी सेवन करने लगता है। कुछ में चिंता तनाव होता है, उसकी वजह से अकेलापन जो होता है तो उसकी वजह से तंबाकू का सेवन करने लगते हैं
1: जी।
2: कुछ सोशल मीडिया जो है, पिक्चर और भ्रामक जो प्रचार दिखाए जाते हैं, इसकी वजह से भी आकर्षित होते हैं
1: जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि फिल्मों और जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे भी आकर्षित होकर उनके जैसा बनने के लिए भी लोग नशा करते हैं
2: जी। जी, इसमें स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है, थोड़ा कूल बनने के लिए, दिखाने के लिए वो शुरुआत करते हैं इसका सेवन।
1: लेकिन ये जब व्यक्ति शुरुआत में तंबाकू का सेवन करता है तो वो काफी कम मात्रा में लेता है, धीरे धीरे इसकी मात्रा क्यों बढ़ने लगती है?
2: तंबाकू में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एक बार अगर स्टार्ट करता है तो बार बार इसकी जिज्ञासा होने लगती है। जैसे तंबाकू में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे एक निकोटीन होता है, निकोटीन अब मस्तिष्क में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें एक बार लेना स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन जिसको बोलते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, शांत मन होता है। तो अगर चिड़चिड़ापन है उसको और तनाव में है तो थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील होता है।
1: अच्छा, ये जो कहा जाता है कि तंबाकू के सेवन से या शराब के सेवन से तनाव कम हो जाता है, यदि आप बहुत अधिक तनाव में है तो शराब का सेवन करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, आपका तनाव दूर हो जाएगा, तो क्या ये बात सत्य है?
2: इसमें ये निकोटीन ही एक ऐसा पदार्थ होता है जो बार बार प्रेरित करता है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील तो होता है, जैसे ही छोड़ते हैं फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको ये थोड़े टाइम के अच्छे लगने के लिए वो का आदि हो जाता है धीरे धीरे।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि आपको 10-15 मिनट के लिए एक राहत का अनुभव करवा सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको हताशा और निराशा के चक्र में डाल सकता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब बात करते हैं कि बच्चों में लत हम देखते हैं कि पाई जाती है, बच्चे भी आजकल तंबाकू का सेवन करने लगे हैं, तो बच्चों में ये आदत किस तरह से आती है और उसे कैसे हटाया जा सकता है?
2: बच्चों में आदत तो स्टार्टिंग से ऐसे ही आती है, फ्रेंड सर्कल की वजह से आती है। उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है, काउंसलिंग कर रही है, स्कूल कॉलेजों के आसपास जो पान इन सब की जो दुकानें हैं उस पे चालानी कार्रवाई कर रही है। 18 साल के बच्चों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने के लिए, खाने के लिए एक्ट लाई है जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है गवर्नमेंट।
1: तो ये जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है ये किस तरह का कार्यक्रम है, इसमें शासन की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ विस्तार से बताइएगा?
2: इसके लिए शासन की ओर से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 2003 में ही सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट लाया गया गवर्नमेंट, जिसमें 18 साल के बच्चों को तंबाकू बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई, स्कूल के आसपास जितने भी चीजें हैं वो सब बंद कर दी गई, और जागरूकता अभियान लाया गया, NTCP नेशनल टोबैको प्रोग्राम लाया गया जिसके अंतर्गत जागरूकता अभियान लाया गया, स्कूल कॉलेज जो हैं, पंचायत विभाग हो गया, हर जगह छोटे छोटे जागरूकता अभियान लाए गए हैं
1: जी। बताओ डॉक्टर, जब आप देखते हैं कि तंबाकू का सेवन लगातार किया जा रहा है और हम सभी को ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता होती है, चाहे वो नशा कोई व्यक्ति करता हो या ना करता हो, कि इसकी परिणति बहुत ही खराब है, जब आज से कुछ वर्षों बाद वो व्यक्ति नशे का आदि हो चुका होगा तो उसकी दुर्गति ही होनी है, ये सभी को पता होता है, इसके बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें नशे की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है?
2: यही होता है जैसे मैंने बताया कि अकेलापन, चिड़चिड़ापन, चिंता, अकेलापन जो होता है तो वो अट्रैक्ट करता है इनसे। गवर्नमेंट का यही है कि अपन ऐसी जागरूकता अभियान लाए कि जन जन में जाके अपन इसके लिए प्रेरित करें लोगों को, जो गुटखा तंबाकू ले रहा है उसको। और हाँ, बहुत अच्छी चीज है, गवर्नमेंट अभी हर जिला अस्पताल में टोबैको सेसेशन सेंटर खोल रही है जिसमें वहां पे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है, तो जो व्यक्ति आदी हो गया है इसका तो ऐसा नहीं छोड़ नहीं सकता है, वो यहाँ आके उनकी काउंसलिंग की जाती है, दवाएं दी जाती हैं, तो ये आदत से छुटकारा मिल सकता
1: है। कई लोगों को ये रहता है कि हमें एक सुरूर सा है कि जब तक हम सुपारी या फिर तंबाकू, यदि किसी को खैनी की आदत है और वो खा रहे हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि जब तक हमारे मुंह में वो चीज जाती नहीं तब तक हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जब तक मुंह हमारा चलता नहीं रहता हर समय तब तक हमें खराब लगता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और उनकी इस आदत से वो कैसे दूर हो सकते हैं?
2: उनको यही कहना चाहते हैं कि आपके दोस्त यार में जो ले रहे हैं ऐसा है, उनसे दूर रहें, ज्यादा से ज्यादा परिवार

0: से कनेक्टेड रहें, डॉक्टर की सलाह लें, व्यायाम करें, ताकि इन सभी तरफ आपका ध्यान आकर्षित ना हो।
1: कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितना हो सके इन सब पदार्थों से दूरी बनाए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अच्छा, हमारा जो जिला प्रशासन है जिसमें आप बतौर नोडल अधिकारी कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के में, इसमें किस तरह की गतिविधियां आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं जिससे उन्हें जागरूक किया जा सके?
0: इसमें बहुत सारे गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जाके कैंप्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और न केवल वो बल्कि उनके फैमिली में जो भी ग्रसित है, जो भी ये चीजें ले रहा है, तो वो जाके बताएं और वो आके जो टीसीसी सेंटर है वहां पे संपर्क करें, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है और कुछ दवाएं दी जाती हैं ताकि उन सब चीजों पे कुछ छोड़ सके।
1: क्योंकि आप जिला अस्पताल में, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे जिसमें तंबाकू ने पूरे की पूरी गृहस्थी को खराब कर दिया होगा, तो किस तरह की जो है खराब परिणाम नशे के कारण आप देखते हैं?
0: ये सर, जैसा कि आप हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए कि लगभग 8.5 करोड़ आबादी है, जिसमें से लगभग 34% मतलब 3 करोड़ पॉपुलेशन जो है टोबैको का किसी न किसी फॉर्म में यूज करती है
1: जी।
0: उनको काउंसलिंग करना, उनको इस बारे में सरकार ऐसा ट्रेनिंग दे रही है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो ताकि ये प्रॉपर तरीके से गाइड करके छोड़ा जा सके इसको
1: जी। और जो नुकसान होता है परिवारों को तंबाकू के कारण, वो कौन कौन से नुकसान आपने देखे हैं?
0: ये तो देखिए सर, ये मतलब ना केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी होता है। शारीरिक नुकसान तो होता ही है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी फैमिली देखे हैं जो सिंगल परिवार में कमाने लायक हैं, लेकिन वो नातों की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, और न केवल लोग बल्कि उनका पूरा परिवार सफर करता है
1: जी।
0: आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी हमारे बॉडी में जो कैंसर होते हैं उसमें से लगभग 28% कैंसर मुंह का कैंसर होता है, जिसका सबसे मेन कारण है ये टोबैको यूज करना।
1: तो इतना गंभीर परिणाम हमें तंबाकू के सेवन से मिल रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: इसके बावजूद भी लोग तंबाकू का लगातार सेवन करते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्तियों से आप आकाशवाणी के मंच से क्या कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी के मन से हम यही कहना चाहते हैं कि आप प्रॉपर, अगर आपको आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लेते हैं, आप नहीं भी लेते हैं, तो उनको जिला अस्पताल भेजें, हमारे यहाँ जो सेंटर है उसमें प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको इस लत से छुटकारा दिला सकते हैं। व्यायाम करें और चिंता से दूर रहें
1: जी। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। अच्छा, अब ये जो नशा मुक्ति अभियान है, इस अभियान से आम जनता जो है वो किस प्रकार से जुड़ सकती है और अब स्वयं को, अपने परिवार को और अपने आसपास के परिवेश को तंबाकू की लत से कैसे बचा सकती है?
0: इसमें यही है कि जिनको भी ये आते हैं तो वो दो बार हमारे यहाँ विजिट करें, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। बहुत सारी टीम है हमारी, हम जगह जगह जाके कैंप्स वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे सम्मिलित हों और प्रॉपर जो हम बताते हैं वो फॉलो करें, आप छोड़ सकते हैं तंबाकू वगैरह, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है
1: जी। किसी को तंबाकू की लत छुड़ाने में आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा क्या लगा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जैसा आपने बताया कि एक बार कोई छोड़ देता है फिर थोड़े टाइम बाद फिर करने लगता है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ही अगर वो नहीं है, अगर मन में नहीं ठान पा रहा है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो उसको नहीं छुड़वा सकते
1: जी।
0: तो अगर एक बार आप मन में वो कर लेते हैं कि नहीं हम छोड़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली तंबाकू धूम्रपान वगैरह छोड़ सकते हैं।
1: और जो युवा पीढ़ी है जो तंबाकू, सिगरेट और शराब, चूंकि हम ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस है लेकिन शराब भी चूंकि नशे का एक बड़ा माध्यम है, तो इनको छुड़वाने के लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके जो अगर ऐसे दोस्त यार रहें जो ये चीजें करते हैं, उनसे आप दूरी बना के चलें और अपना ध्यान पढ़ाई पे आकर्षित करें।
1: ये जो समस्या है ऐसा नहीं कि केवल बच्चों में और उसमें है, हम देखते हैं कि जो उम्र दराज व्यक्ति हैं वो भी नशे का बहुत अधिक सेवन करते हैं और उनके कारण भी कई बार ऐसा देखा गया है कि दादाजी से उनके बेटे में और बेटे से उनके पोते में आया है
0: जी जी।
1: तो इस तरह का जो पारिवारिक दौर चला रहा है नशे का
0: जी जी।
1: उन व्यक्तियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे वृद्ध और बुजुर्ग हैं जो इन लत में लगे हुए हैं?
0: जी, उनका यही कि सबसे पहले अगर ये कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान दें, अगर एटलीस्ट ये कर रहे हैं तो उनके सामने ये चीज ना करें, जो बुजुर्ग करते हैं वही बच्चे सीखते हैं, और कोशिश करें कि आप भी इसको छोड़ सकें।
1: तो नशा, हम ये कह सकते हैं कि तंबाकू के नशे की लत जो है छोड़ी जा सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने तंबाकू निषेध के संबंध में, और चलते चलते आकाशवाणी

0: के मंच से आप छिंदवाड़ा की आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: छिंदवाड़ा की आम जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। तंबाकू वगैरह जो इससे गंभीर बीमारियां होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां भी आगे चल के बड़ी बीमारियां बन सकती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहिए
0: जी। डॉक्टर पंचराज कुमार वर्मा जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर पंचराज वर्मा से दीपांकर तिवारी की भेंट वार्ता। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय

0: साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, FM 102.2 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए अब कुछ संदेश।

0: अब सुनिए प्रादेशिक समाचार भोपाल से।
1: पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये फटा है। सुन, पते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी

0: हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263386 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
3: उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में आवंटन कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य

0: उनका प्रति मिलता था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए, और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांतिपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम राम स्वीकार हैं ग्राम सभा के सभी श्रोता। मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की आज इतवार को दिन है भैया और 31 तारीख है मई को आखिरी दिन और कल से जून शुरू हो जाए और भारत में जैसे कहते

ना कि 15 जून से बरसात शुरू हो जाते हैं और उससे पहले प्री मानसून शुरू हो जाते हैं, मतलब मानसून से पहले की बरसात शुरू हो जाते हैं। ऐसे में खेती किसानी को काम जो है वो एकदम बढ़ जाते हैं और किसान भी जो है कहते हैं ना कि सूद से जग जाते हैं कि भैया आप खरीफ सीजन की तैयारी करना है। तो भैया आज आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य, ई विषय पे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम हम कर रहे हैं ठीक 7:30 बजे से। और हमारे आज जो विशेषज्ञ हुई हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से हमारे साथ हुई हैं। और फोन नंबर आप ध्यान से लिख लो, फोन नंबर है 0755 एसटीडी कोड लगा के 2660902, एक और नंबर है 2660903, इन दो नंबरों पे आप हमें फोन कर सकते हैं। भैया कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हम एक जरूरी आज बात बता दें कि आज एक बड़ो विशेष दिन है। हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू हम सब जानते हैं, तंबाकू खाए से का बीमारी होते जा भी हम सब जानते हैं। तंबाकू एक ऐसी चीज है वो आप कैसे भी ले लो, बीड़ी सिगरेट हुक्का गुटका खैनी चाहे जैसे ले लो, आपके लाने ढेर सारी बीमारियां शरीर में देखे जाते हैं। और जैसे फेफड़ों को कैंसर, मुंह को कैंसर, गले को कैंसर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, जे ऐसी बीमारियां होते हैं जो आपको होने लगते हैं। और जा बीमारी जब आपको हो जाते हैं तो फिर आप जानते हो कि पूरा जीवन तहस नहस हो जाते हैं, घर परिवार तहस नहस हो जाते हैं, पैसा लगाते हैं चैन चलो जाते हैं, सुकून चलो जाते हैं। इसे हम आज आपसे यही कहेंगे कि आज के दिन हम संकल्प लें कि हम तंबाकू से बनी चीज़ों को सेवन नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं भैया, बुंदेली समाचारों को टाइम होगा है। बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लाने प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताई कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन के जुड़ी भई दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कही कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कही कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब से शामिल होवे और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा को जिक्र भी करो। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता को जिक्र करो, जिन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ करो है। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बाल कृष्ण अय्या की कहानी भी साझा करी, जिन्होंने मंदी मोटा मोलापट क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लाने काम करबो शुरू करो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कही है कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण को याद करत है। प्रधानमंत्री ने कही कि अहिल्याबाई को जीवन, सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव को अनुकरणीय उदाहरण है। उनने सदैव साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ नेतृत्व करो। उन्होंने कही कि अहिल्याबाई ने मंदिरों और तीर्थ स्थानों के पुनर्निर्माण और सभी के लाने न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने में अति प्रिय योगदान दव है। प्रधानमंत्री ने कही कि अहिल्याबाई ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को अधिक सुदृढ़ करने के लाने और समाज, संस्कृति तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा देश को प्रेरित करत रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान को शुभारंभ करेंगे, जो अभियान
30 जून तक जारी रहेगो। इको मुख्य उद्देश्य उर्वरकों को संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखत भए किसानों को

0: टाइम पे सलाह देबो, पंचायत स्तर पे सक्रियता और योजनाओं को सीधो लाभ गांव तक पहुंचावो है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बरसात के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लागू हुआ है। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य सभी विभागों को हाई अलर्ट जारी करो है। आपात स्थिति में आपातकालीन संचालन हेतु हेल्पलाइन नंबर 89587573335 और 82183263386 संपर्क के लाने जारी करो है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय को भूमि पूजन करो। उन्हें 121 करोड़ 60 लाख रुपया की राशि से मां शारदा संदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज संदीपनी विद्यालय सुंदरसी और राजा भोज संदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों को लोकार्पण करो है। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक उत्पादों और जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत करे गए कार्यों की आधारित प्रदर्शनी को अवलोकन भी करो है। मौसम में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू से बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि के असर देखने को मिले हैं। मौसम विभाग को कहबो है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहेंगी। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकत है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये थे आज के बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के बाद ग्राम सभा में अब बारी है हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम की। हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना। जैसा कि आज हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में हमने आपको बताया था, आज हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, जो कि कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा जिला विदिशा से हमारे साथ हैं। और आप हमारे फोन नंबर ध्यान से लिख लीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है एसटीडी कोड 0755 के बाद 2660902, एक और नंबर 2660903। इन दोनों नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। सवाल आए उससे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन से क्या आशय है?
1: देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि उर्वरक प्रबंधन का मतलब ये है कि जब हम जैसे खरीफ फसल आ रही है, उन खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पानी पड़ती है, जब पानी बरसात के दौरान बहुत सारे उर्वरक हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें ये क्या करती है, पानी के साथ बह जाती है। यदि आपने इसका सही प्रबंधन नहीं किया तो आपका उर्वरक डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता, विशेष रूप से बरसात सीजन में। तो यहाँ पर हम किसान भाइयों को समसामयिक कार्यों के अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि उनमें जो उर्वरक है उसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक की जो क्षमता है वो सही बनी रहे, उनका सही उपयोग हो, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये कि बरसात के मौसम में खरीफ सब्जियों फसलों में सबसे पहले हम उर्वरक का अपना लेने का तरीका, उनको संरक्षित करने का तरीका, उनका प्रबंधन के तरीके पर अपन ध्यान देंगे।
0: हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे एक बार बात करते हैं कि हेलो।
2: गुड्डू चौबे बोल रहे बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
0: गुड्डू चौबे जी बमोरी सागर से बोल रहे हैं, कैसे हैं गुड्डू जी?
2: बढ़िया।

0: साहब खूब अच्छे हैं,
1: खूब अच्छे हैं। अबे मौसम बिगड़ो है तो सागर को क्या हाल है?
0: और बात रहे हैं कहूँ कहूँ आस पास पानी गिर गया, कहूँ तो थोड़ी बहुत ओरे ओरे गिर गए, कहूँ आधी तूफान चली है।
1: अच्छा अच्छा, तो
0: जहाँ हम है उसे कछू नहीं भाव तना बूंदा पानी भाई।
1: चलो अच्छी बात है। अब वो तपा लगे हैं दादा, तपा में पानी गिर वो ठीक नहीं हुए है ना?
0: हाँ खराब रहे थे, तपा तो चाह
1: खराब रहे थे। अब वो कह था ना कि जेठ मास जो तपे निराशा, तो जानो वर्षा की आशा
0: है। अभी तब जो बने हैं सब जरूरी है, तपा भी जरूरी है सब।
1: अब जा बताओ कि खरीफ में का योजना बनाई है? आज को विषय जो है वो जो ही है कि खरीफ में अपने
0: पूछा साहब, जैसे अपन सोयाबीन बहने तो कम से कम खाद डालने या बिना खाद को कैसा हो जाए?
1: बड़ो अच्छो नोनो सवाल पूछो है सर, बताइए।
2: हाँ देखिए गुड्डू भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कम मात्रा का प्रयोग करना है, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद होता है।
1: नाइट्रोजन से मतलब यूरिया,
2: यूरिया यूरिया जो जिसको नत्रजन अपन हिंदी में बोलते हैं, वो पौधा खुद बनाता है। तो यदि आप उसको ज्यादा प्रयोग कर दोगे तो पौधे में बीमारी लग सकती है, इसलिए आप उसमें कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा प्रयोग न करें, ये हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं।
1: धन्यवाद गुड्डू जी हमें फोन करने के लिए। और जैसा कि बड़ा अच्छा विषय अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि कैसे खाद डालें, कितनी मात्रा में खाद डालें, और उन्होंने एक शब्द और बोला कि बिना खाद के लगाएं क्या? तो बिना खाद के जो लगाना चाहते हैं सोयाबीन, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
2: देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है वास्तव में, कि हम सभी किसान भाइयों से रासायनिक उर्वरक की तो हम कम आशा करते तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी। लेकिन खरीफ मौसम में जो फसल है उनमें यदि आप बिना खाद के करें, विशेष रूप से गोबर की खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: सही बात। अब वो ये कहते हैं ना कि खाद पर है तो खेत, तो नहीं तो कूड़ा रेत।
2: हाँ बिल्कुल सही।
1: खाद जरूरी है पर जैविक खाद जरूरी है ना। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
3: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
3: हरदयाल जाटव, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
1: हरदयाल जाटव जी बोल रहे हैं शिवपुरी से ना?
3: हाँ
1: जी, कैसे हैं आप वहाँ, मौसम कैसा है?
3: मौसम तो बढ़िया है, दो दिन अच्छा पानी बरस गया, हम भी पानी।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी, मैं वही जानना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास फोन आते हैं, पर मौसम कहाँ कैसा हो रहा है ये भी हमारे श्रोताओं को पता चलता रहे। हाँ। क्या योजना है खरीफ में आपकी, बताए ना?
3: आज की ये समस्या की मानी जो वर्षा होनी, जो मूंगफली देते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, माने कौन सा बीज और कौन सा खाद डालना चाहिए।
1: जी जी, मूंगफली की बुआई का सही समय कब शुरू हो रहा है और कौन सी वैरायटी?
2: हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। खरीफ मौसम में मूंगफली को आप लगाएं, क्योंकि मूंगफली तिलहनी फसल है, तेल प्राप्त होता है इससे, और इस फसल को आप जितने बढ़िया सही समय पे आप लोग उत्पादन उतना अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप इस जुलाई में, जुलाई के सीजन में जब भी आप 10-15 जुलाई के बाद आप उसका प्रयोग, आप उसका बुवाई कर सकते हो। उसमें बहुत सारी बुवाई, उसकी वैरायटी है, उनकी जाति बहुत गुच्छेदार आती है और कई कम गुच्छेदार आती है। आपको जिस प्रकार का चाहिए, बड़े दाना चाहिए या छोटा दाना चाहिए, आपको जैसी वैरायटी आपको चाहिए आप वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें। शिवपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो अच्छी वैरायटी मिले, वैसे बहुत सारी ब्रैग है, बहुत सारी वैरायटी है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको वहाँ मिले या ना मिले ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आप कृषि विज्ञान केंद्र से वो आप जाति का प्रयोग करके उसको बुवाई करें जुलाई के महीने में।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। सर जैसे मूंगफली की बात करी गई है, मूंगफली लगाने के लिए वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मूंगफली लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या है?
2: देखिए मूंगफली हमारे जो किसान भाई है, जैसे अपन ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सेम वही तरीका है उसका, कोई अलग से तरीका नहीं। उसका भी बीज होता है, उस बीज को बोया जाता है।
1: नहीं, दूरी कितनी
2: दूरी, उसकी दूरी, दूरी में बीज की उसकी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बीज लगाया जाता है। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों खेत की तैयारी कर ले, उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटाश पहले डाल दे, यूरिया टुकड़ों में डाले, 50% यूरिया

0: पहले डाले उसके पास 50% डाले, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी मात्रा में डाल के और फिर उसको दो तीन बार डाल के फिर चौथे दिन बाद आप बीज की बुवाई आप उसकी कर सकते हैं।
1: एक और कहा जाता है कि लाल मिट्टी हो, कंकर वाली मिट्टी हो, ये मूंगफली के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है, लाल मूंगफली हो या लाल मिट्टी के अलावा यदि आपकी थोड़ी सी रेतीली मिट्टी हो उसमें मूंगफली बहुत अच्छी
1: होती है।
0: तो हमारे किसान भाइयों को इस पर ध्यान दें।
1: अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
2: सक्सेना जी, जयराम जी।
1: जयराम जी, मैं समझता हूँ ये गोलू भाई का तो नंबर नहीं है।
2: हाँ सर, बिल्कुल सही आपने वाला।
1: बहुत बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज कान में आई है गोलू भाई, है ना
2: जी। बता सर, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया है। और आपके वहाँ कैसी स्थिति है सागर की?
2: बस सर, हम आए थे अभी, मतलब 5 बजे एक झला पानी गिर गया है जी, मतलब जामान चलो बह करो तो।
1: अच्छा,
2: और कहा है तो
1: अब जो है ना कि मानसून जो है अब करीब आ जा रहा है, तो जो प्री मानसून कहा थे जाकि बरसात तो शुरू हो जाते, और वैसे भी दो जेठ है।

0: जी बता सर, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया है। और आपके वहाँ कैसी स्थिति है सागर की?
0: बस सर, हम आए थे अभी, मतलब 5-1 बजे एक झला पानी गिर गया है कि सर जी, मतलब जामान चलो बह करो तो
1: अच्छा।
0: और कहा है तो
1: अब जो है ना कि मानसून जो है अब करीब आ जा रहा है, तो जे प्री मानसून कहा थे जाकि बरसात तो शुरू हो जाते है। और वैसे भी दो जेठ हैं, तो जेठ एक तो निकल गए है, तो है ना भाई, तो जो वैसे तो जो
0: हाँ देता है। मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर से गोलू अहरवार बात कर रहा हूँ। सर अच्छा। ये हमारा प्रश्न ये था सर जी, मतलब जो मक्का का बीज रहता है, जैसा कि हम लोग भाटुआ में मक्का बोते हैं, तो वहाँ पे मतलब जिलक जाती जमीन, कोई ऐसा बीज नहीं है कि जमीन मतलब जिलक जाती तो वो मक्का का पेड़ मतलब खराब ना हो?
1: भटुआ में मतलब के भटुआ बोले तो ऐसी जमीन जो
0: हाँ मतलब एकदम वो ज्यादा मतलब जमीन जिलक जाते
1: जिलक जाती, पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, फिर वहाँ जब लगाते हैं तो मक्का सड़ने लगती है।
0: जी जी।
2: तो आप आप, आप, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब
1: उसका सड़े ना ऐसा कोई बीज?
0: कोई क्वालिटी बताइए सर, ताकि
2: देखिए इस प्रकार की मिट्टी में जब भी आप बीज बोए, कोई सा भी बीज बोए, आप बीज उपचार करके जरूर बोए। आप एक बार थायरम एक उससे थायरम से या बेवेस्टीन से आप बीज को उपचारित करें, और उस बीज को आप कल्चर जरूर डालें, चाहे वो आप एजो स्पायरम कल्चर ले ले या उसको आपको जो भी हो PSV ले ले, उस कल्चर से उपचारित करके यदि आप बोएंगे तो बीज नहीं सड़ेगा आपका।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: क्योंकि सर हम आए थे मतलब काफी ज्यादा सूखे घास वाले ये खेत ज्यादा मिलेंगे।
2: हाँ तो कोई बात नहीं है, आप होने तो उसमें आप बीज को उपचारित कर दे एक बार, फिर देखिए आपको ये दिक्कत नहीं आएगी।
1: वैसे तो आजकल जो बीज किसान भाई खरीदते हैं उपचारित ही आता है
2: वो सर उपचारित आता है, लेकिन होता है। वो उपचारित क्या है, जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो वो केवल दवाई उसमें वो मिल जाते हैं, जबकि अपन को FIR सिस्टम से उपचार करना, चले पहले फंजीसाइड से, फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से, फिर कल्चर से, इस प्रकार से तीनों से उपचारित करके बोगे तभी आपका बीज संरक्षित रह पाया, नहीं बरसात में बहुत जल्दी खराब हो जाता
1: है। वाकई ये भी सच बात है, ये मक्का जो है मोटे अनाज में आती है और ये थोड़ा सा कम पानी वाली जगह पर लगाने वाली फसल है,
2: कम पानी जगह पर थोड़ा सा उथला भी रहता है उसका बीज रहता है। जैसे और बीज 5 सेंटीमीटर पे इसका कम से कम 3-4 पे आपको लगा।
1: तो वही है कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हर जमीन में हर फसल नहीं लगाई जा सकती, हमें फसल की स्वभाव को उसके नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा,
2: प्रकृति को समझना,
1: उसको भी समझना होगा। हमारे अगले श्रोता भी जुड़ गए हैं, जानते हैं कहाँ से कॉल है। हेलो
3: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से कॉल किए हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी आपका शिमला से फोन आता है, बहुत अच्छा लगता है, हर रविवार आप फोन करते हैं, कैसे हैं सर?
3: बढ़िया है, अभी बारिश हो रही थी और क्या बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो किसानों के लिए जो जानकारी मिलती तो हम उसका लाभ लेते हैं, तो आकाशवाणी भोपाल के माध्यम से।
1: जी जी, मैं आपकी इस भावना की बहुत इज्जत करता हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारी आकाशवाणी ये पूरा रेडियो जो है ना, इसके 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
3: जी 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
1: 90 वर्ष से जी,
3: पहले से बधाई शुभकामनाएं।
1: तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप जैसे सुधी श्रोताओं से ही रेडियो है ना।
3: जी
1: आपका सवाल बताइए राकेश जी।
3: जी मेरा ये सवाल है कि हमने अभी सोयाबीन लगाई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा हम खाद डालते हैं तो उसमें हमें किस क्या क्या प्रावधान का क्या क्या हमें रखनी पड़ेगी?
1: शिमला में आप सोयाबीन लगाते हैं?
3: जी लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, पर अलग किस्म की सोयाबीन होती है जो अच्छा, आपके इधर की नहीं होती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए पूछा कि सर बताइए।
2: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सोयाबीन में आप उर्वरक प्रबंधन, आपको मैं एक बार मैंने और एक किसान को ही बताया था, आपने शायद सुना हो कि हमारी सोयाबीन एक दलहनी फसल है और इस दलहनी फसल में नाइट्रोजन नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य होता है, तो इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान देखने की जरूरत है कि आपको नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करना है, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना है, और दाने में चमक आए इसके लिए आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए। तीनों जो उर्वरक है आपको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। चौथी सबसे मुख्य बात यह है कि ये दलहनी फसलों में और खरीफ के मौसम में इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये हमेशा डाल के खेत में रखना है, क्योंकि अभी आपने डाल दिया होगा गर्मी में और अब आप उसकी जुताई करके समतलीकरण करने का काम करके और आप उसको

0: बुवाई सही तरीके से करते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आप बीज को उपचारित करके जरूर बोएं।
1: धन्यवाद राकेश जी हमें फ़ोन करने के लिए। और सर, जैसा कि सोयाबीन की जब भी फसल की बात आती है तो हमेशा किसान भाई उसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो क्या सिंगल सुपर फास्फेट का पहले भुरकाव किया और उसके बाद में उन्होंने अपना बखर वगैरह कर देते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का डोज क्या होता है?
0: सिंगल सुपर फास्फेट का डोज आपको कम से कम 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको डालना पड़ेगा। इतने ही मात्रा में आपको 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा और नाइट्रोजन का आपका प्रयोग 40 से ज़्यादा न करें, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यदि आप कम मात्रा में नाइट्रोजन डालोगे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो पाएगी,
1: बिल्कुल।
0: और फास्फोरस कम डालोगे तो वृद्धि जड़ों की नहीं हो पाएगी, और पोटास के लिए आपको दानों की क्वालिटी। इसलिए तीनों फर्टिलाइजर का हमारे किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिन किसान वार्ता थोड़ा सा मिट्टी की जांच भी करवा ले, यदि मिट्टी की जांच में ये पाया जाता है कि उनकी जो मिट्टी यदि अम्लीय है या क्षारीय है उनकी, तो क्षारीय मिट्टी के लिए आपको कम से कम जिप्सम का प्रयोग हमारे
1: करना
0: किसान भाइयों को
1: पड़ेगा।
0: करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर तेल बनता है, तो तेल वाली फसलों में सल्फर बहुत आवश्यक होता है।
1: अच्छा, ये भी है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बखरनी हो गई है उसके बाद में फिर डालते हैं। कुछ किसानों का ये है कि पहले डाल देते हैं उसके बाद फिर बखर कर देते हैं।
0: नहीं, सही तरीका तो पहले खेत की तैयारी करें हमारे
1: जी
0: किसान भाई अच्छी तरह। जब खेत पूरी तरह से तैयार हो जाए तो बीजों का बढ़िया अंकुरण प्रतिशत देख के और एक उपयुक्त समय देख के आप बुवाई कर सकते हैं।
1: कर सकते
0: खाद
1: हैं।
0: आपको पहले ही डालने पड़ेंगे।
1: एक और बड़ा ज्वलंत सवाल हमारे सारे किसान भाइयों के दिमाग में इस समय होगा और मेरे मन में भी है, वह यह कि इस समय जिस तरह से मौसम विभाग का बार बार अलर्ट आ रहा है कि ब्रेक लंबे पड़ेंगे, मतलब पानी बारिश होगी और फिर रुकेगा, ऐसी स्थिति में कौन सी किस्म सबसे बेहतर मानते हैं आप?
0: देखिए, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारे सोयाबीन की वैरायटी निकाली है। उसमें आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो जल रुकना नहीं चाहिए सोयाबीन की फसल में। पानी, जैसा कि आपने बताया, बहुत स्पेल ड्राई स्पेल आता है, तो पानी ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और कम भी बहुत ज़्यादा नुकसान
1: बिल्कुल।
0: है। ये दोनों स्थिति हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। यदि किसान का पानी ज़्यादा हो जाता है तो कुछ नालियों का निर्माण करके पानी को बाहर निकाल दें, और यदि ड्राई स्पेल होता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे किसान भाई को रखें कि उसमें पानी दे सकें। इसीलिए इसके लिए हमारे GS 335 बहुत सारी वैरायटी है, ब्रैग करके एक वैरायटी बहुत अच्छी आती है, वो आप डाल सकते हो। 2769 आप डाल सकते हो, 2760 है वो आप दे सकते हो। बहुत सारी वैरायटी है जिनका कि हमारे किसान भाई प्रयोग करके खेत में उपयोग कर सकते हैं।
1: और मैं समझता हूं कि मेड नाली पद्धति से जो बोने की बात
0: बस
1: कही
0: वो
1: जाती है वो
0: फरो
1: इस
0: और
1: समय
0: बेड
1: तो
0: बेड राइज वाली जो है
1: जी
0: वो उसका भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर
1: कर
0: सकते हैं,
1: सकते हैं,
0: उनका भी हमारे किसान भाइयों प्रयोग करना
1: करना
0: चाहिए।
1: चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से किसानों से ही कहूंगा कि पूरे खेत में अगर आप सोयाबीन नहीं बो रहे हैं, थोड़ी सी जगह बचा लें, वहां ढाल जहां पर हो तो वहां एक गड्ढा पहले से अभी बना के रख लें। मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश आएगी तो कम से कम आपको एक लास्ट मोमेंट पर लगता है बिल्कुल आखिर में कि अब क्या करें, बारिश नहीं हो रही है, पानी वहां से आपको मिल सकता है। और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे मित्रों, हम आपसे कहते हैं कि आप हमें फ़ोन कीजिए, बहुत अच्छा समय है, सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
2: जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं नरेंद्र डांगी
0: नमस्कार
2: बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील शामपुर से।
1: नरेंद्र जी, कैसे हैं
2: सर बढ़िया,
1: आप?
2: भगवान
1: तो
2: की
1: बहुत
2: कृपा।
1: पास से फोन लगाते हैं पर अच्छा लगता है, नियमित रूप से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें फोन करते हैं। और क्या
2: जी
1: योजना है आगे खरीफ की?
2: सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि हम सर रबी सीजन में 1 एकड़ में 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं सर, वो यानी वो खरीफ फसल में वो खाद काम देगा कि डालना पड़ेगा हम?
0: नहीं, देखो, आपको दोबारा खाद, आपने दोबारा खेत की तैयारी की है तो क्या होता है, जैसे आपने रवि में जो खाद डाला था ना, वो तो बहुत सारी गर्मी, आप देखो कितनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी में हो सकता है ऊपर उड़ गया हो, एवोपरेट हो गया, और नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं तो वो चला जाता है। इसलिए आपको दोबारा ही डालना पड़ेगा, और ये सब खाद आप तीनों संतुलित मात्रा में, खादों के अलावा आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम सल्फर भी आपको एनपीके के साथ

0: डालना पड़ेगा।
1: सीधी सी बात है, नई यात्रा कर रहे हैं तो नया टिकट लेना पड़ेगा।
2: ठीक है
1: है ना। धन्यवाद फोन करने के लिए। सर, सोयाबीन की बात हो गई है, धान की बात नहीं हुई है। वाकई खरीफ में धान का रकबा बहुत बढ़ जाता है। धान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो कहा जा रहा है कि बारिश रुक सकती है या बारिश लंबा ब्रेक ले सकती है, वहाँ धान में क्या सावधानी बरतें?
0: देखिए सक्सेना साहब, अब कुछ धान की ऐसी वैरायटी आएगी, जैसे अपन गेहूं बोते हैं ना, ऐसी भी वैरायटी धान की आएगी। पहले हम धान का मचेला तैयार करते थे, पानी भरते थे, बहुत सारी दिक्कत,
1: बिचड़ा तैयार होता था।
0: अब किसानों का वो बहुत कम हो गया।
1: हाँ।
0: अब किसान केवल पानी, जैसे ही पहला पानी पड़ता है खेत की तैयारी करके वो किसान डायरेक्ट बो सकता है। फिर यदि भगवान ने पानी दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लगा के आप उसको ज्यादा से ज्यादा पानी जरूरत है, 3-4 पानी आप दे सकते हो, उससे भी आपका धान हो सकता है। अब इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटी आ गई, इसलिए हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह मचेला बना दे तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो भी आप हल्की जो हल्के क्या कहते हैं सीड्रिल से भी आप उसकी बुवाई
1: कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उर्वरक प्रबंधन की अगर बात
0: हाँ
1: करें।
0: उर्वरक प्रबंधन में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों तरह के उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, संतुलित मात्रा में डालने पड़ेंगे, मिट्टी की जांच करके आपको डालने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ, कम से कम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर आपको पोटाश फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी और 30 से 40 केजी पोटास की जरूरत पड़ेगी।
1: अच्छा, इस समय धान की नर्सरी डालना शुरू हो चुके हैं।
0: हाँ, नर्सरी कई लोगों
1: के बारे में बताइए ना।
0: नर्सरी डाल दी हमारे किसान भाइयों, हम बताते हैं नर्सरी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और कम से कम 1 हेक्टेयर में कम से कम 10,000 पौधों की इस प्रकार की नर्सरी तैयार करें आप, जिससे कि 40 से 50 हजार पौधे जिसमें हों, और उसका पौधा नर्सरी में जिंक का भी प्रयोग करें, एनपीके का तो करें ही, और स्वस्थ पौधे उसमें किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो और नर्सरी का बिल्कुल रखरखाव अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कहां से कॉल किया है। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
3: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमना जिला छतरपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
1: हुकम चंद यादव जी, छतरपुर से आपका फोन है।
3: जी जी,
1: कैसे हैं? बढ़िया हैं।
3: जी
1: जी जी, हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन को लेकर। क्या योजना है आपकी, खरीफ में कौन सी फसल लगाएंगे आप?
3: जी सर, यही पूछने थी कि सोयाबीन पिछले साल जुलाई में 2 क्विंटल सोयाबीन बच गया तो सर जी, वो इनमें अपना स्लो धरो तो वो बेच सकते हैं कि नहीं आप?
1: वो नहीं पाए थे, पिछले साल का सोयाबीन है। कौन सी वेरायटी है?
3: जी सर मालूम नहीं, लेकिन बोरिंग कितनी 2 क्विंटल बच गई थी, सिली चलाई गई कितनी धरी, भी बो सकते हैं या नहीं बो सकते?
0: देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सोयाबीन की फसल का हमने खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि 4 बोरों के नीचे वाला बोरा है उसको भी यदि हम बोते हैं तो भी वो नहीं निकलता है साहब, सोयाबीन कैसा बेकलू बेकार हो जाता है। आपका बीज किस स्थिति में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप दूसरा नया बीज लेके बोए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं कि उसका क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति रही है। फिर भी आपको मैं बहुत सारी,
1: और मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आपने किस भाव का लिया था बीज?
3: वो 70 रुपया किलो लिया था।
1: 7,000 के भाव का लिया था ना, 9,000 का तो अभी रेट चल रहा है, बेच दो उसको, बेच के नया बीज खरीद लो।
0: फिर भी मैं आपको बताया तो जेएस 95-60 ले लो, 20-29 ले लो, 20-34 ले लो, जेएस की बहुत सारी वेरायटी हमारे पास है, जेएस 97 न मिलो, एनआरसी की वेरायटी ले लो, 37 है, 86 है, एक अच्छी वेरायटी नई अभी आरवीएस विश्वविद्यालय ग्वालियर ने निकाली है, आरवीएस 2001-04, आरवीएस 2010-01, इन वेरायटियों का प्रयोग करो तो आप बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल की वेरायटी यदि सही हो, मॉइस्चर उसमें सही हो, उसका इनर्ट मटेरियल बहुत सही हो, अच्छा हो, तो आप कहीं एक दूसरे खेत में जहाँ को आपको लगता है वहाँ नहीं, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन मेरी समझ में तो है कि पुराना बीज आप प्रयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा
3: जी, बिल्कुल जी, ठीक
1: है ना। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। और सर, बाकी बड़ा अच्छा विषय इन्होंने पूछ लिया सवाल, हमारे किसान भाई एक ही वैरायटी को सालों से बोते चले आ रहे हैं।
0: नहीं, अब
1: कई हैं ऐसे किसान भाई, वो ही निकाला वही
0: वैरायटी आ रही, वो कई हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, वो उनका जीवन काल एक सीजन है बस,
1: बिल्कुल
0: ज्यादा
1: बिल्कुल। हाँ,
0: हमने कई बार देखा है कि कई बहुत अच्छा अच्छा बीज बाहर से मंगाते हैं और यदि वो नीचे वाला बीज है बोरियों से दबाव, वो भी नहीं
1: उगता, बिल्कुल सच है।
0: तो ये आपने किस स्थिति में इस बीज को रखा है, अपन को क्या मालूम?

0: सही बात है, लोडिंग होके आ रहा है,
1: लोडिंग होके आया है, या
0: दब
1: आप भी,
0: गया।
1: हाँ दब गया, बेकार हो गया।
0: तो ये बहुत बहुत ज्वलंत विषय है। हमारे किसान भाई प्रमाणित बीज लेके आ रहे हैं,
1: हाँ
0: सब कुछ ठीक है, पर उसका अंकुरण परीक्षण हर हाल में
1: हर
0: करके
1: हाल में
0: देख रहे
1: करना
0: हैं।
1: चाहिए, 80 से 90% अंकुरण परीक्षण होना चाहिए।
0: नहीं तो खुश हो जाते हैं, हम तो साहब वैरायटी का बीज लाए
1: हाँ,
0: थे
1: और फिर
0: और
1: लास्ट में किसान को दिक्कत
0: किसान
1: है,
0: दिक्कत
1: बहुत
0: हो
1: दिक्कत
0: जाती है।
1: है।
0: अंकुरण परीक्षण की भी हम बात करेंगे, हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में। कहाँ से सुन रहे हैं हम आपकी आवाज को?
2: जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह
0: चरण सिंह जी,
2: जी।
0: बंडा से फोन है
2: मक्का
0: आपका।
2: बेने तो कौन किस्म की बेने मक्का?
0: मक्का कौन से किस्म की बेने हैं? सर मक्का की वैरायटी के लिए बहुत सारे लोगों का फोन बार बार हमारे पास आ रहा है, मक्का की अच्छी वैरायटी बताइए।
1: देखो, सागर में तो बहुत अच्छी अच्छी मक्का होती है, आपको मैं बताऊं, और फिर भी हम आपको कुछ मक्का की वैरायटी बोलते हैं, वो आपको कृषि विज्ञान केंद्र सागर में मिलेगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। मैं नाम आपको लिखा देता हूँ, एक तो लिखिए जवाहर मक्का के नाम से मिलती है, जवाहर मक्का 2016, ये वहाँ मिल जाएगी आपको। एक पूसा विवेक करके वेरायटी है, अभी अभी आई है मक्का की, बहुत अच्छी वेरायटी है, 90 दिन की वेरायटी है ये, और इसमें विटामिन और प्रोटीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। गंगा 5, ये वेरायटी आप बहुत ज़्यादा उपयोग होती है सागर में, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वेरायटी, 100 दिन की है, लेकिन ये 90 दिन की, तो ये 100 दिन की, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो मक्का की आप बहुत सारी वेरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना ये है कि आपको कैसी मिट्टी में लगा रहे हो, उर्वरकों का क्या आप उर्वरक उसमें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बीज उपचार कर रहे हो कि नहीं कर, इन बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: और साथ ही ये भी है कि आपका उद्देश्य क्या है,
1: हाँ,
0: मक्का भुट्टे के लिए
1: भुट्टे
0: बोना
1: के लिए
0: है,
1: बोल रहे चाह रहे, या पशु के लिए, खाने के
0: हाँ,
1: लिए, खाने
0: या
1: उसके
0: आपका
1: लिए
0: उद्देश्य जो है
1: चारा,
0: वो या भुट्टा बेचना है या अनाज के हिसाब
1: अनाज
0: से
1: के लिए
0: आपको करना है।
1: बेचेंगे,
0: सर आजकल ये भी
1: उसके लिए
0: एक,
1: हाइब्रिड मक्का का प्रयोग करना पड़ेगा
0: जी,
1: आपको।
0: स्वीट कॉर्न के हिसाब से
1: हाँ
0: जो मक्का लगाई जाती है उस वैरायटी के लिए भी आजकल बहुत डिमांड है, चूंकि नकदी फसल के रूप में मैं समझता हूँ कि वो एक मक्का की फसल हो गई है अब, तो ऐसी स्थिति में भी हमें ध्यान रखना होगा। हम वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं सर, बात कर रहे थे हम बीज उपचार की, बीज उपचार का सही तरीका क्या है सर, संक्षेप में बता
1: सर,
0: दीजिए।
1: बीज उपचार को अपन को 3 तरह से करना चाहिए, जिसको FIR सिस्टम हम लोग बोलते हैं।
0: जी
1: इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि आपको किसी भी फफूंदनाशी से पहले आपको बीज उपचार करें, दूसरा उपचार आप किसी भी एक कीटनाशक को लेके करें, और तीसरा आप कल्चर से करें। इसके लिए आप 200 ml पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ ले लें, उसकी एक बढ़िया स्लरी टाइप की बना लें, और उस स्लरी में जितना भी PSV कल्चर है, आपका कोई भी कल्चर है, जो स्पेक्टर है, एजो वेक्टर है, एजो स्पायरल है, कोई भी कल्चर आप उसमें डाल के उसको घोल के एक काला काला सा घोल बना लें, और पूरे बीज के ऊपर आप एक साथ बिल्कुल समतल उसमें एक उसमें स्लरी को पूरे बीज पे लगा दे, और छाया में उसको सुखा ले, और छाया में सुखाने के पश्चात दूसरे दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हो।
0: अच्छा
1: तो इस
0: अच्छा
1: प्रकार से आप करोगे तो आपका बीज का, ये समझ लो कि आपके बीज में टीकाकरण हो चुका है, आपका बीज जमीन में जाके किसी प्रकार की जीव कीटाणु से वो उसको नुकसान नहीं कर
0: हो
1: पहुंचेगा।
0: सकता है। मित्रों बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे किसान भाइयों ने फ़ोन पर हमसे पूछे हैं, और आपने सर बहुत सफाई से बहुत बढ़िया तरीके से उनको उत्तर भी दे दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सजाने संवारने में हमें जो सहयोग मिला है, मैं आपको बता दूं, उद्घोषिका के रूप में मीठी मधुर आवाज़ लेकर हमारे साथ थी श्वेता तिजोरिया, प्रसारण सहायक के रूप में हमारे साथ थी फरनाज हसन, कंट्रोल रूम से हमको सहयोग कर रहे थे प्रवीण कुमार सिंह और राजू वासे, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार के रूप में मैं आपके साथ था मनोज सक्सेना। मैं आप सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने हमें कॉल किया, और वे किसान जो केवल हमें सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, फ़ोन हमें करते रहिए, हर कार्यक्रम में हम इन्हीं नंबरों पर बात करते हैं। आप हमारा जो कार्यक्रम है, हर बार विषय भी अलग अलग होता है, हर विषय पर हम सवाल और उससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं, तो अगले रविवार हम फिर आएंगे, लाएंगे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम। सर चलते चलते अगर मैं आपसे कहूं कि बस 30 सेकंड में

0: बात रह गई हो जो लगता है कि होना जरूरी थी।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ समसहायक कार्य भी एक इसमें बड़ा अच्छा विषय था। उसमें मैं हम अपने किसानों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो बुवाई करें तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करें। दूसरा, 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज अनाज है तो प्रयोग करें। चारे के लिए प्रयोग करें तो 40 से 50 किलो, और पौधों से दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, कतार से दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर करके हमारे किसान भाई इसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ आज की ग्राम सभा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकारिए मनोज सक्सेना की राम राम।

0: ये था कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। रात के 8 बजे हैं और हम लेकर आ गए हैं अपने श्रोताओं का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

दोस्तों, कार्यक्रम आपकी पसंद में रंजनी आप सभी का स्वागत करती है और कहती है नमस्कार। और अब बिना देर किए जोड़ती हूँ मैं आपको आपकी पसंद से, जिसका है आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार। दोस्तों, आजकल गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। वैसे दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ना कि इतनी तपती गर्मी में भला ऐसी तारीफ कौन करता है। दोस्तों, मैं कह रही हूँ ना, और वो इसीलिए दोस्तों कि इस मौसम को लवली मौसम मानकर मैं खुद को थोड़ी ठंडक दे सकूँ और आपको थोड़ी राहत पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सच तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर प्रकृति, बड़े प्यारे मौसम और अजब गजब ऋतुएं उपहार में दी, लेकिन हम मनुष्य ही अपने स्वार्थ, लालच और महत्वाकांक्षाओं के चलते भगवान की दी हुई इन मुफ्त की लेकिन बेशकीमती सौगातों को संभाल कर संवार कर रख नहीं पा रहे हैं। अपनी बात के जरिए आज मैंने छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों, हम सभी को जगाने का, चेताने का कि अभी भी आने वाली वर्षा ऋतु में हम अपनी ओर से पौधे लगाकर, पानी बचाकर, पर्यावरण का ध्यान रखकर अपना छोटा छोटा योगदान ज़रूर दें। तो चलिए, इसी बात पर हम पहला गीत आपको सुनवाते हैं, मौसम से ही जुड़ा हुआ। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई, आवाज़ें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, गीत है नक्श लायलपुरी का और संगीत है खयाम का। इस खूबसूरत से गीत को सुनना चाहते हैं विवेकानंद कॉलोनी से मौसम मालवीय, श्रीमती इति मालवीय, श्रीमती जानवी मालवीय, मित्र और बेबी मणिका, मयूर मालवी, आकांक्षा मालवी और मास्टर मीहान मालवी जी। नासिक महाराष्ट्र से इसी गीत के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश मिला है संदीप ताजने, मधुरा ताजने, पुष्पा ताजने और अश्विनी ताजने जी का। इसी गीत के लिए अगली पसंद है देवी शंकर गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता, रोहन देवेश, विष्णु गुप्ता, पप्पू और मुनिया जी का, न्यूटन चिकली नंबर 11 से। पुराना नागपुर नाका छिंदवाड़ा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनिल मालूनिया, श्रीमती सुनीता, माया मालूनिया, प्रतिभा अंशिका, आयुष मोहित मालूनिया, ज्योति विनोद चौरसिया, बबन पवार और के सी मनराह जी। चौकसी कॉलोनी छिंदवाड़ा के हमारे ये श्रोता श्री सुधीर मिश्रा, मनीषा मिश्रा, अदिति व्यास, मोहित

व्यास, बेबी गौरी व्यास, अनादि व्यास और सागर सोनी जी। गुलाबरा गली नंबर 1 से भाई राजू निखाड़े, श्रीमती अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी, सोनल, समीक्षा और सुरेश निखाड़े जी ने भी अपनी पसंद में इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए श्रोताओं, आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवदास फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। ये है राम मंदिर के पास परासिया से देवेंद्र बख्शी, मुफ्फी भाई, राजू यदुवंशी, बसंत वर्मा, शकुन साहू, रघुवीर सूर्यवंशी और उवेश तलत जी। इंदौर से हमें इसी गीत के लिए व्हाट्सएप संदेश भेजा है लोकेंद्र चौहान, नेहा चौहान और मास्टर वृशांक चौहान ने। ताजनगर छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता गफ्फार बाबू, रुखसाना बेगम, आयरा इनाया, राहुल पाल, फूल सिंह मक्कड़ और हरीश विश्वकर्मा जी। नॉर्थ चांदा मेटा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद अशफाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक, हुमा और सायमा जी। ग्राम आलीवाड़ा तामिया के हमारे श्रोता देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती जी। इसी गीत के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश मिला है आनंदम टाउनशिप से सोनू, आशीर्वाद, शीतल, देवेश, भावना क्षत्रिय, विवेक चंद्रशेखर शांडिल्य जी का। मोहन नगर छिंदवाड़ा से इसी गीत को सुनना चाहती हैं दीपिका सूर्यवंशी, पूजा विशाल सूर्यवंशी और धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता अनुराधा, मुकेश श्रीवास्तव, अनुष्का, आदित्य श्रीवास्तव जी। पुराना गुरैया नाका के हमारे श्रोता मोहित सूर्यवंशी साउथ सिविल लाइन से और श्रीमती सोनल बंदेवार जी ने इसी गीत के लिए हमें संदेश भेजा है। चंदनगांव छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता हैं डॉली और पहल जी। अगला संदेश हमें मिला है सोनल और शुभम पाल जी का बेलपेट जिला सिवनी से। तो आइए सब आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं फिल्म देवदास का ये खूबसूरत सा गीत।

0: शुक्र हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद जारी रहेगा। डगर विकास की कार्यक्रम के बाद अब सुनिए भोपाल से कार्यक्रम डगर विकास की।
1: विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर

0: प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बात का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उन पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे SC ST का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज, वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है। प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के, वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं हैं या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं, इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं?
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में, बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
1: श्रोताओ, PME विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल,

0: स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
1: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें से दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
0: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
2: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है, तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, 2-3 लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
0: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
2: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
2: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है।

0: उससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
0: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज़्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: अभी आप सुन रहे
1: हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। रात के 8:30 बजे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में रंजनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती है आपकी फरमाइशों के साथ। दोस्तों, अब आप सुनेंगे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल को फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गीत में, और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। ये है बमनी लाला परसोली से सतीश रघुवंशी, राज रघुवंशी, शिवम, अजय, शिवराम चौरे, सत्यम साहू, रामकृष्ण मर्सकोले, वीरपाल यादव, सखाराम साहू और इनके ढेर सारे साथी। बाबूलाइन चांदा मेटा के हमारे श्रोता हैं सरोज पथरोले, मेघा पथरोले, पूजा खरे, करण झा, कुंज झा, शिव कुमार सयाम, मुकेश कुमार ठावरे और गणेश राम धुर्वे जी। कलेक्टेड रोड छिंदवाड़ा से इस गीत के लिए पसंद हम तक पहुंची है मनीष पूजा श्रीवास्तव, पावनी और तनिष श्रीवास्तव जी की। दमुआ से इन्हीं के साथ हैं ऋचा धर्मेश श्रीवास्तव। नई आबादी छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता श्रीमती चंपा साहू, मनीष साहू, संतोषी, संदीप, अर्चना साहू, ममता, समृद्धि, कृष्णा, यशु, खुशी, उदित और वेदू साहू जी। फ्रेंड्स कॉलोनी से इस गीत को सुनना चाहते हैं नीरज वंदना दुबे, पराग पलक और चंद्रभूषण दुबे जी। भोपाल के हमारे श्रोता कुश, कनन श्रीवास्तव, आशीष शर्मा, श्रेया दुबे, सायमा मलिक, प्रिया शुक्ला और अदिति मालवीय जी। मातेश्वरी मंदिर जगतदेव मोहल्ला वार्ड नंबर 13 अमरवाड़ा से इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवलाल जावरिया, रीना जावरिया, पीयूष, उर्वशी और पियांशी जावरिया ने। टावर स्ट्रीट न्यूटन के हमारे श्रोता निसार खान, अभिलाषा सूर्यवंशी, उमेश गुप्ता और अमरनाथ जी। जाटा छापर चौकी लाइन से मोहनलाल दिवांगन, रेखा दिवांगन, अर्चना, रुखसाना बेगम, अब्दुल गफ्फार, विवेक बंदेवार और आश्रित आर्य ने भी इसी गीत को पसंद किया है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये झूमता हुआ गीत।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं डेंजरस इश्क। इस फिल्म के गीत में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार को। राहत फतेह अली खान का ही संगीत है और गीत है शब्बीर अहमद का। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। ये हैं बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज गवनेकर जी। बेड़ी के ही हमारे अगले श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर जी। पंचशील नगर छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता आयांश, मोहित, तानुष, लखन सिंह जी। पिपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 परासिया से हरिराम साहू, विनीता साहू, पायल, गगन साहू, वंदना, चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूवी साहू, सलीम अंसारी और न्यूटन पुलिस चौकी के पास से भवानी साहू और पप्पू साहू जी। ग्राम ढाला पोस्ट दीघा वानी परासिया के हमारे श्रोता सहदेव, सरिता भोंडे, श्रद्धा, अभय, वासु भोंडे, बलराम, सरिता, दिशा, अभिजीत, सोनू, दद्दू भोंडे, ओम प्रकाश और किरण डहरिया जी। अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश, अनुवेश, ऋतिक, अंकु और सिंकी वाघ जी। इन सभी का खत हमें मिला है न्यूटन चिखली वार्ड नंबर 14 से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको डेंजरस इश्क, इस फिल्म का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। रात के 8:45 होने को हैं। अब सुनिए समाचार दिल्ली से।
1: फिरोजी, मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में

0: ये रिकॉर्ड बनाए, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक

0: पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल

0: मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।
1: बहुत

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी

0: प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।
1: तो

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: देख

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

0: से मेरी जिंदगी।
1: तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था, लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता। सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सब पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

ही रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में

0: बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी।